प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण उसे छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है।

भिनाते रहने वाले पुरुषों के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दुभर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम कार्य करते रहें, जो कुछ हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, हमारी स्टडी की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होते हैं हमारी आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं आज ऐसा थी दाम्पाकलोम्ब आकाशवाणी के अरुण एफएम से हार्दिक स्वागत करती हूँ। सन 2026 जून महीने के आज 12 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर तथा तकनीकी अभियंता एम जिर्दो। श्रोता, हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे देर और ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की आरंभ करते हैं। श्रोता, आइए हम जानते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में 6 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 6:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज, 6:10 पर आप सुन पाएंगे भक्ति गीत, 6:40 पर गालो श्रोताओं का समाचार। छह बजकर 45 मिनट पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे, 7:10 पर आपातकालीन श्रोताओं का समाचार, 7:15 पर कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट और 7:35 पर आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का समाचार। 7:40 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सदाबहार और 8 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभाग, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर शिलांग केंद्र से प्रसारित नोटिस न्यूज, 8:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर, 9 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली के

तो श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको बता दूं कि अब से कुछ पलों में यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर

आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्वेता, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्वेता, प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम भक्ति गीत, और इसके अंतर्गत आप सुन पाएंगे थाबायाल नवम और इनके साथी द्वारा कृष्ण भजन।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे ताबा या अलनावा और उनके साथ ही द्वारा कृष्णीय भजन। आपको बता दूं कि इसके साथ ही कार्यक्रम भक्ति गीत यही पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में यानी 6:40 पर आप सुन पाएंगे गलो श्रोताओं का समाचार।

0: Si akaswani tanegare tanegata mro gam jabam do la lo for ga lori go la lo ni lu go aroso ka galo menken agama melen ji ra menken men jinango gumar lendo Prime Minister Nirmal Narendra Modi lori go la lekhen nab niti ayog ka ba dokumam ne rashtrapati bhavan lo New Delhi lo du ga du la bharat desh ki vikshit bharat ga ladu indu na kam la menken ji to amdola niti ayog yona bijano ka do agam ne aj jab rila indu na kam do la Naru istet gala sentar gajnapuk gamana monamde layubas kam do laken ga chena mam mento minsila ok bharat desh ga laga ba madum hagdum nam sigi niti ayog ok bikshit bharat ga bijana amla menken jitu chepnista nirbu pema kando nirbu tai tagak ne an fos ba rajya sabha ga mp ba darle namamne kalik jala koek do la social media lo ai agamne jilen tu bentala tai tagak mulla kalok istet ga laga ba din jab badamne pagra do la Yakago estate development abalokom mentom rupamne rige bantula ijamur naro estate gago mendi namne national level lo menda tadu kuna kamla japkenjitu mato alo lo arunachal pradesh ga trade and commerce la indian institute of foreign trade kolkata moyo tarak neko gago ma ka emenjitu yo laga arena lo tolita nagar lo export facilitation sale go molik garla estate soka local product kom national lo international level lo puglen doba rigaram to second rep ko bol estate ga business रिकॉल अप मैंने का लगा बे कंपार का दे दो हम लम बैंक पाता तो सिगी यंग एंटरप्रेनर्स का दम ने रिर मेरे नाम करीब बे रिदो द स्टेज जग इकोनॉमी एम कम अलब कागुर दे दो हम ला सिगी आत्मा निर्भर का बता झाल इंदु ना कम ला बैंक पाजी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ फ्री कॉन्सेप्शन ऑफ फ्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट गारा लोक निमिलो बे रिदो ला फाओ गरब तोरे कुला आओ रम ने जाम या लोक आओ ओम ने मपाग या ला मेडिकल इन ला मपाग नाम सिगी तरग यारू कुमा दो एमदोला सिगी मेडिकल का डॉक्टर का दकम रिदेग मेंटे कुमा दो बेमला एक्ट सिगिम ने लागू थुन में कम दो सिगिम ने खाला जस्टिस संजय खेरोला जस्टिस पी के मिश्रा गवर्नमेंट का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जनानी सुरक्षा योजना और लाडली लक्ष्मी योजना का सिगिम ने तारिकना को रुदू एमदोला सिगी निजर ओक यामेगत का रेशियो हमने लयू मोल पर गवर्नमेंट रुदू ना कम तो नामसाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अल्ला स्टार्टअप इंडिया मधु आलोलो तेजा सुरक्षा को डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेनर्स का दम ने बिजनेस का लघु सिगम ने मेंटम दोबे हमला लोदुम गतो दो नलो डिप्टी कमिश्नर सीआर कंपा नरो यूथ सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टूडेंट्स आर्टिशियंस ओका जॉब मदर ने का दम ने क्विक दुला नोनु सो का आइडिया लोक तागा प्ला आयोग लोकल बिजनेस हमने रिरप गे काम दुला नोनु यादम काइबा बिजनेस रेन रकुद नोनु करालो स्टेट का अनप्लेट यूथ अगर रिपाला दोपातु पल रदे कोम पारम तो Tangkat nun galau mungkin agam sim akaswani thanagar loko tafadu. Kehifanya district yajali ke government high secondary school lo district gangan wari workers gad galaga ba leadership workshop go lodum gato. Sigim dinci nago ba takab dola district ga chamru akeng gola chamji go ba angan wari workers gad akum la afau gadam ne yob drig drag ba remo kendag de ok. Akor enam nima monam gadam ne yob menlom tamab takab doba mungkin nag de agam ne mento minstu mental la आंगनवाड़ी गत सी की माँ बा अफाव का दिगा लाजुम बांगी है बरिदू ने हम दूला दो ना अलग लोग का गोमल हमने ताकि जाना को हमारा आंगनवाड़ी हमारा घर फैमला मैं कहीं जीतू गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल थावांगलो फ्री प्राइमरी टीचर्स गत गले का बा दोनी लोगों को बा कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने सिलो गलो का रिरप का ट्रेनिंग सिगिम ने समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का रालो रिगदूना का अमदाक दो ना लोलो तावांग दिशी नमग्या लांगमो सिंजी का तवांग डिस्ट्रिक्ट सीबीएसई एग्जाम रिजल्ट हमने खाला कोई दोला डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स का दम ने अमान कर जीतो मेंटाला संबंधा दा लोनी ने कम आलना रिजल्ट हमने कातों कम बतो कमला मेंटु बालेग रायंग दोलो लो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस और कृषि विज्ञान केंद्र का फैला लोक खेत बचाओ अभियान का अबा हमने मेंटम नाम लगा बा अवेयरनेस प्रोग्राम को लोदुम गतो सो को निगम का दोलो नी और परमर्स का दम ने मेंटम ला नोनो रुक बगान रिला अफाजे लीकोलो याचू दोबाय ओके फर्टिलाइजर्स लगियो का सिगी कोदे ओके गोय का बदु ओपो लगाब अलमा के अब्दुल्ला आयु का नेकोलो का बर्मी कोम्बोस मो नाम ओके सबसो ए पोलो का दिन लिया तो काम तो दो नानो लो फार्मर से छमुम को लाके गोब पुरिक जीतो छमगो को लनी ना बरदु नाम कैपिटल कॉम्प्लेक्स ड्री वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 हमने मदो आलो लो ड्री ग्राउंड लो रिरप काम दो सोगम निजुरिया में वॉलीबॉल टीम कोनागोबा हादु आदुला ओपनिंग मैच हमने मुनी का चैंपियन फान शाम्बी क्लब ला होतो क्लब छी मिंजी तो सो शाम्बी क्लब छी गो मियाला ओ कमेंटर बे को सिनी का ड्री सेलिब्रेशन का गोमला ऑनरिंग द फ्यूनर्स रिजप मेन द gunam ne ayanam agam de menken do la let lot kojega korunga diri sigam ne irga jab rirab gan ne munai kam la ma pata tu ka tanaka da sego galo menken ago ma aga
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गालो श्वेताओं का समाचार। गालो श्वेताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप मेरे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। बीते हुए कल की चिंताओं को छोड़िए और आज को उत्साह, विश्वास और मुस्कान के साथ अपनाएं। आपकी सोच आपकी ताकत है। सकारात्मक रहें, मेहनत करें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। ईश्वर करे आपका दिन खुशी और सफलता और शांति से भर जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही आप सभी का कार्यक्रम सुबह सवेरे में हार्दिक स्वागत है, जहां आप मेरे साथ जुड़ेंगे हेल्थ से जुड़ी कुछ खास बातों के साथ और कुछ बेहतरीन हिंदी फिल्मी गाने। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्मी गाने फ्रॉम द फिल्म दिल मांगे मोर। गीत के बोल है खूबखू और इस गीत को गाया है शान और जायस ने।

दोस्तों, फिल्म गीत के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपके आरजे साथी दापक। अब चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम बातें करते हैं आज के सेगमेंट में विटामिन सी के फायदे। जी हाँ, विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स है। इसके कुछ मुख्य फायदे हैं। इम्यूनिटी सपोर्ट करता है, यानी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। और विटामिन सी साथ में कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो स्किन, गम्स, हड्डियों और जॉइंट्स के लिए भी जरूरी है। साथ ही घाव भरने में सहायक होता है। दोस्तों, विटामिन सी ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो सेल्स को डैमेज से बचाने में मदद भी करता है और आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, खासकर प्लांट बेस्ड फूड से मिलने वाले आयरन का, और हेल्दी स्किन और गम्स को सपोर्ट करता है। दोस्तों, अभी चलिए विटामिन सी से भरपूर फलों के बारे में जानते हैं। आंवला, अमरूद, संतरा, मौसम्बी, नींबू, कीवी, स्ट्रॉबेरी, पपाया, अनानास, मैंगो, इन सब में विटामिन सी मिलती है। अब चलिए नजर रखते हैं विटामिन बी से भरपूर सब्जियों पर। शिमला मिर्च, खासकर लाल और पीली, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टोमेटो, हरी मिर्च, पालक में कुछ मात्रा होती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, विटामिन सी हिट से कुछ हद तक कम हो सकता है, इसलिए फल को फ्रेश खाना बेहतर है। सब्जियों को ज्यादा देर तक ना पकाएं। सैलड या हल्की कुकिंग से विटामिन सी ज्यादा बचता है। आंवला और अमरूद विटामिन सी के सबसे बेहतरीन और बजट फ्रेंडली सोर्सेस माने जाते हैं। एक आंवला या एक अमरूद भी दिन की विटामिन सी की जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है। जी हाँ, अब चलिए कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हुए आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्मी गाने फ्रॉम द फिल्म थाल। और गीत के बोल है नहीं सामने तू, और इस गीत को गाया है हरिहरन और सुखविंदर सिंह ने।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, अंतराल के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में। जी हाँ, और इससे पहले आप सुन रहे थे गीत मदहोशी फिल्म से। दोस्तों, आशा है हमने जो विटामिन सी के बारे में बात की, आप उसे जरूर अपनाएंगे। विटामिन सी वाले फलों और सब्जियां आप जरूर सेवन कीजिए ताकि आपकी स्किन हेल्दी रहे। अब चलिए कार्यक्रम सुबह सवेरे में और आगे बढ़ते हुए पेश कर रहे हैं तुम जो आए गीत फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई से। और इस गीत को आवाज दी है राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार ने।

दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के तुरंत बाद यानी 7:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम अब बतानी श्रोताओं का समाचार।

0: 밀보 응아미 할루그라호 흐느야파 불라호 안오호 에레호 그도람파 님 밀보 헬라 카피올라카 문누미 무요 헬라 오스카푸고파 고멘다이 몰라호크 몰루카 베티바차 베티파라 자나니 수락사 요즈나 라드리 락스미 요즈나 헬라카 고멘다이 호클라카 물리마빌라카 문누미 아야파 임플리멘트 무도파 문가 두미미오 아타 알루그라호 님 밀보 헬라 흥크레도마 흥크레마도파 무도테 헬라 모다 요클 팔라무도 Namsai District Administration's Aginso Startup India Ministry of Commerce and Industry Government of India Laho Arunachal Pradesh Innovations and Investments Park Luka Atang Mukumu Pasala Tasde Aloso Tejas Hela Workshops Ako Namsai District So Mugla Mutu Molusaka Workshops So Hoka Entrepreneurs Locals Business Mu Dunyan Atami Empowers Bila Entrepreneurships Me Promote Mula Mugla Mutu Government Higher Secondary School Yajali ki Panjar District Soka Doko Sobio Anganwadi Workers Paka Kam Munyabu Ata Me Leadership Workshops Ako Mugla Mubla Molu Kaseka Workshops So Molu Hamara Anganwadi Hamara Garv Hela Tem Butola Munyagla Mutu Seka Workshops So Ablo Da Workers Atamana Participate Mubu Hala 100% Percentage Ala Ho 120 Hepa Anyala Abloda alam mutila loko lamudo. Ano longwe me capacity building training programs ako pre-primary hok la class 2 loe teachers atandunyane me trainings me ako bigla government town secondary school tawang ho mugla munyate buyo. Seka training programs me samagra siksa under Nipun Bharat initiatives Department of Education tawang dai hok la organize mugbila mutu. Seka aloso tawang hoka Deputy Commissioner Dunbo Namgail Angmo Akojapa Ala Mukobila Ho Hakoka Secondary La Higher Secondary School Ka Principal Headmaster Dunme CBSE Ho Ka Students Paka Outstanding Loda Kamubila Kamuko Pamul Amiya Award Mula Bikula Mutte 52nd Capital Complex Dri Festival Volleyball Championship 2026 Anyampaka Volleyball Pikasalaka Munu Mi Sekataste Alohok Dri Ground Papunala Nalagan Ho Murigukla Open Dokula Ludo Osaka Championships Competitions So Total Meeting Kuai Men's and Women's Category Hokla Keladula Mubola Mukindo Opening Match or Depending Championship Champions Sambu Clubs La Huto Clubs New Pikasala Mula Mutila Ludo Soroka Pulukosan Hamkane
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आपातानी श्वेताओं का समाचार आपातानी श्वेताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी करुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर जहां होती है दिल से दिल की बात और अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट दोस्तों कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है जहां आप जुड़ेंगे मेरे साथ राजधानी ईटानगर के समाचार पत्रों के साथ और कुछ खास फिल्मी गानों के साथ कार्यक्रम में सबसे पहले चलिए आपको सुना रहे हैं फिल्मी गाने फ्रॉम द फिल्म इश्क बेस्ट गीत के बोल है चोट दिल पे लगी और इस गीत को आवाज दी है अलिसा चिन्नई और कुमार शानू ने

दोस्तों, इस गीत के बाद अब चलिए कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में नजर रखते हैं समाचारों पर। दोस्तों, राजधानी ईटानगर के प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां हैं, कैटरेक सर्जरी रिज्यूम्स एट रुक्सिन आफ्टर ए डिकेड, पूर्वी सियांग जिले के ताशी पांगेंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एफआरयू ने 10 साल के अंतराल के बाद मोतियाबिंद की सर्जरी की सेवाएं फिर से शुरू कर दी है। आंखों की सर्जरी सेवा का फिर से शुरू होना जमीनी स्तर पर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को मजबूत करने और स्थानीय लोगों के लिए आंखों की अच्छी देखभाल तक पहुंच बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। मोतियाबिंद की सर्जरी एमएस ऑप्टोलॉजी डॉक्टर डीकेई ने सफलतापूर्वक की उनकी विशेष किया था और लगन ने इस जरूरी सेवा को फिर से शुरू करने की अहम भूमिका निभाई। 9 जून को रुक्सिन सीएचसी की मेडिकल टीम ने मोतियाबिंद की 5 और पार्चरजिम की 1 सर्जरी की, जिससे उन मरीजों में नई उम्मीद जगी और उनकी नजर बेहतर हुई जो ऐसे दृष्टि हानि से जुड़ रहे थे जिसे रोका जा सकता था। फार्मर्स अर्ज टू अवॉइड यूज ऑफ केमिकल्स इन क्रॉप फील्ड्स। सियांग जिले का कृषि विभाग 1 महीने तक चलने वाला खेत बचाओ अभियान चला रहा है, जिसमें जिले के 30 गांव शामिल हैं। यह अभियान 6 जून से चल रहा है। इसी तरह के कार्यक्रमों की कड़ी में विभाग ने बुधवार को बोलंग सर्कल से सीनी गांव में एक अभियान चलाया। इससे पहले पीआरआई नेताओं और प्रगतिशील किसानों की मौजूदगी में बोलंग और लीलिंग गांव में ऐसे अभियान चलाए गए थे। बोलंग के कृषि विभाग व विकास अधिकारी एडीओ बाउम पादुम ने ग्रामीण किसानों से टिकाऊ खेती के लिए वैकल्पिक और समग्र तरीके अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये तरीके पर्यावरण के अनुकूल हैं और मिट्टी की सेहत बनाए रखने व जल शोषण के लिए फायदेमंद है। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन SIR एक्सरसाइज हेल्थ गुरुवार को यहां डिप्टी कमिश्नर के कॉन्फ्रेंस हॉल में वाटर लिस्ट के एक वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस ट्रेनिंग में जिले के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर, सुपरवाइजर और बूथ लेवल ऑफिसर शामिल हुए। इस प्रोग्राम का मकसद चुनाव से जुड़े अधिकारियों को SIR प्रक्रिया को असरदार ढंग से चलाने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना था। प्रोग्राम के दौरान अधिकारियों ने एक वर्चुअल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और वोटर लिस्ट में सुधार, वोटर वेरिफिकेशन और SIR प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर लागू करने के बारे में विस्तार से निर्देश प्राप्त किए। तो दोस्तों, ये थे राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब चलिए कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में और आगे चलते हैं और पेश कर रहे हैं आपके लिए फिल्मी गीत। आर राजकुमार फिल्म से गीत के बोल हैं धोखाधड़ी और इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह, पलक मुच्छल और प्रीतम चक्रवर्ती ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म एक्शन रिप्ले से। आपको बता दो कि इसी के साथ ही कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे धागिन श्रोताओं का समाचार। धागिन श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी अपने आरजे दांपा के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जा होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 7:40 हो रहे हैं। इसी के साथ अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम सदाबहार। दोस्तों, कार्यक्रम सदाबहार में आपके लिए हम पेश करेंगे बेहतरीन रेट्रो गाने और आप जुड़ेंगे मेरे साथ आज के वेदर की अपडेट्स के साथ। तो चलिए, कार्यक्रम में गीतों से पहले सबसे पहले नजर रखते हैं आज की वेदर अपडेट्स क्या है। दोस्तों, आज 12 जून को ईटानगर में मौसम ज्यादातर बादलों से घिरा हुआ और बारिश वाला रहने का अनुमान है। तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दिन भर हल्की से माध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना है। हवा नमी वाली ह्यूमिड रह सकती है, इसलिए गर्मी ज्यादा महसूस हो सकती है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ जरूर लीजिए अपने साथ। और दोस्तों, आज दोपहर तक गर्मी और ह्यूमिडिटी ज्यादा महसूस होगी। शाम और रात में मौसम थोड़ा ठंडा होगा। कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बादल बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की वेदर की अपडेट। अब चले कार्यक्रम सदाबहार में आपको ले चलते हैं पुराने गीतों के सफर में। दोस्तों, गीतों के सफर में आपके लिए पेश है आइकॉनिक नंबर, गीत के बोल हैं हवा हवाई। दोस्तों, ये गाना फिल्म मिस्टर इंडिया का है और इस पर श्रीदेवी ने आइकॉनिक परफॉर्मेंस दी थी। इस गाने के बाद उन्हें हवा हवाई गर्ल भी कहा जाने लगा। इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने आवाज दी। उन्होंने बताया कि गाने की शुरुआत में जो मजेदार और अजीब शब्द है उन्हें गाते वक्त बहुत हंसी मजाक हुआ था। लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे, एक मशहूर किस्सा है। इस गाने में श्रीदेवी के एक्सप्रेशंस, कॉमिक टाइमिंग और डांस ने इसे सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि बॉलीवुड हिस्ट्री का आइकॉनिक परफॉर्मेंस बना दिया। आज भी ये 1980s के सबसे यादगार गाने में गिना जाता है। तो पेश कर रहे हैं आपके लिए आइकॉनिक नंबर।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम सदाबहार में। और कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म दूर गगन की छाव में फिल्म से। और अब आपके लिए पेश है गीत आर पार फिल्म से गीता दत्त की आवाज में गीत बाबूजी धीरे चलना।

दोस्तों आपको बता दूं कि आप सुन रहे थे गीत गीता दत्त की आवाज में। इसके साथ ही कार्यक्रम सदाबहार यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में 8 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर आप सुन पाएंगे शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
2: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
2: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो के वाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
4: We signed this year a free trade agreement with Europe.
5: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
6: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायु

0: सेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उपमंत्री जनित रवान कोदितोवक्कु ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है।
2: दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत

0: पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना, हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over rupees 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
2: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
4: In the area, we see immense potential of hydrocarbon. At the initiative of Union Home Ministry, particularly at the initiative of Honorable Union Home Minister, both Assam and Nagaland is joining hands to share the proceeds of this hydrocarbon potential in terms of royalty and facilitate its extraction. So that

श्रोता भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र और शिलोंग केंद्र से प्रसारित समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

कार्यक्रम हेलो ईटानगर में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, इस सेगमेंट पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ खास बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले नजर रखते हैं इतिहास के पन्नों में, आज के दिन भारत में क्या हुआ था। दोस्तों, आज 12 जून के दिन भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। 1975 में इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहरा गया था। यह घटना बाद में भारत में इमरजेंसी लगने की पृष्ठभूमि बनी और 1932 में प्रसिद्ध भरतनाट्यम नाटकी और अभिनेत्री पद्मिनी का जन्म हुआ था। और 2001 में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा यानी बॉर्डर मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत शुरू हुई थी। दोस्तों, आज 12 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। अभी चलिए जानते हैं हम इसके बारे में विस्तार से। वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है बच्चों को मजदूरी से बचाना, हर बच्चे को पढ़ाई और बचपन का हक दिलाना, लोगों में जागरूकता फैलाना। दोस्तों, चाइल्ड लेबर क्या होता है चलिए जानते हैं। जब छोटे बच्चों 18 साल से कम से खतरनाक काम कराया जाता है, स्कूल जाने से रोका जाता है या कम उम्र में काम करने को मजबूर किया जाता है, तो उसे चाइल्ड लेबर कहता है। यह दिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने इस दिन को शुरू किया था 2002 में, ताकि दुनिया भर में बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए एक्शन लिया जा सके। भारत में चाइल्ड लेबर के खिलाफ लॉज है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इंडस्ट्रीज पे बच्चों का काम करना मना है। दोस्तों, इस दिन अवेयरनेस कैंपेन, स्कूल प्रोग्राम्स, पोस्टर्स और रैलीज गवर्नमेंट और एनजीओस के प्रोग्राम्स होते हैं। इस दिन का सिंपल मैसेज है हर बच्चे का हक है पर ना खेलना और इससे बचपन जीना। जी हाँ, अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्मी गाने और उसके बाद हम फिर से लौटेंगे एक कहानी के साथ। फिल्मी गीतों में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत रावान फिल्म से, गीत के बोल है दिलदारा और इस गीत को गाया है साबकर अमानंद अली और विशाल शेखर ने।

दोस्तों इस गीत के बाद अब चलिए कार्यक्रम हेलो ईटानगर में आपके लिए पेश कर रहे हैं और एक बेहतरीन फिल्मी गीत फ्रॉम द फिल्म जश्न। गीत के बोल है तेरे बिन और इस गीत को आवाज दी है श्रेया और शान ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब चले कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। जी हाँ, जिंदगी की सक्सेस और फेलियर की कहानी। एक शॉर्ट स्टोरी। एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। उसके सपने बड़े थे। वो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और पढ़ाई में भी शुरू में वो एवरेज था। दोस्तों, फेलियर का वक्त रवि ने 10th क्लास में पहली बार बोर्ड एग्जाम्स दिए, लेकिन वो फेल हो गया। गांव के लोग हंसने लगे। कुछ लोगों ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा। रवि बहुत दुखी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। फिर रवि ने डिसाइड किया, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। उसने रोज 6 से 8 घंटे पढ़ाई की, मोबाइल और डिस्ट्रेक्शंस कम किए, टीचर से डाउट पूछने लगा और हर दिन रिवाइज किया। अगली बार रवि ने एग्जाम्स क्लियर किए और अच्छे मार्क्स लाए। धीरे धीरे वो डॉक्टर बनने के अपने सपने के करीब पहुंच गया। दोस्तों, कहानी की सबक जिंदगी फेलियर जिंदगी का एंड नहीं होता, मेहनत और लगन से सक्सेस मिलती है। जो इंसान गिरकर उठता है, वही सबसे स्ट्रांग बनता है। जिंदगी में सक्सेस और फेलियर दोनों आते हैं, पर जो सीख कर आगे बढ़ता है, वही जीतता है। अब चलिए, इसी के साथ ही कार्यक्रम हेलो ईटानगर में आपके लिए पेश कर रहे हैं आखिरी गीत नीरज श्रीदार की आवाज में, तुम मिले।

0: दोस्तों आपको बता दूं कि इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम हेलो ईटानगर यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में यानी 9 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
2: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही पूर्वोत्तर को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। चेतावनी में बताया गया कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी असर होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित होते हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की यात्रा पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मुलिन और आर्थिक राज्य सचिव

0: लेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और आगे बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने कहा कि ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति हुई है और इसे ध्यान में रखते हुए यह अचानक बदलाव आया है। श्री ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि नाजुक युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का समझौता लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सवेरे एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि सवेरे करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचा लिया गया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. In a significant development, Centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nephew Ryo. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment. It will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
2: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over rupees 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
1: Centre has issued an advisory about the growing threat of cybercriminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cybercriminals are increasingly using AI to create realistic deep fake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has stressed the need for resilient and diversified supply chains, sustained diplomatic efforts and greater international cooperation to deal with the fallout of ongoing conflicts. Participating in a discussion on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland, Dr. Jayashankar said the impact of the conflicts extends far beyond the regions where they occur. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand beginning today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. U.S. President Donald Trump has called off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. The move comes hours after he threatened to escalate the war by seizing control

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दोस्तों, कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, जहाँ आप पहले साझ रहेंगे फिल्मी गॉसिप्स और बॉलीवुड की अपडेट्स के साथ। तो चलिए, कार्यक्रम में सबसे पहले नजर रखते हैं आज की लेटेस्ट बॉलीवुड गॉसिप्स और अपडेट्स। कुछ ट्रेंडिंग न्यूज आई है। आलिया भट्ट का अल्फा टीजर वायरल हो गया है। आलिया भट्ट की अपकमिंग स्पाइस फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज हुआ है। फैंस और सेलेब्स प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, विकी कौशल ने उनके एक्शन अवतार की तारीफ की। फिल्म को फीमेल लेड स्पाई यूनिवर्स का बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। शाहिद कपूर का शॉकिंग स्टेटमेंट। शाहिद कपूर ने बॉलीवुड ट्रेंड पर कमेंट किया, अपने आप को ब्रांड बोलना साइकोटिक है। इंडस्ट्री में उनके स्टेटमेंट पर काफी डिस्कशंस चल रहे हैं। और साथ ही ऋतिक रोशन रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 में ज्वाइन कर रहे हैं। पहले शाहरुख खान का नाम भी था, लेकिन स्केड्यूल इश्यू के कारण वो आउट हो गए हैं। ये कास्टिंग न्यूज बॉलीवुड और साउथ फैंस दोनों में हाइप बना रही है। कंगना वर्सेस बॉलीवुड पॉजिटिविटी डिबेट। कंगना रानावत ने दीपिका पादुकोण की तारीफ की और बॉलीवुड की नेगेटिव कल्चर पर कमेंट किया। सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शंस आ रही हैं। रीवा अरोरा का स्टेटमेंट। एक्ट्रेस रीवा अरोरा ने कहा कि उन्हें बॉलीवुड में कभी कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उन्होंने आदित्य दर के साथ सेट को सेफ और सपोर्टिव बताया। एक्स्ट्रा ट्रेंडिंग बच में है, बीर पहाड़िया ने कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ बोला और राहुल रॉय ने अपना ऑल हिट सॉन्ग रिक्रिएट किया, जो कि वायरल हो रही है। दोस्तों देखिए, तो आज का बॉलीवुड मोस्टली टीजर्स, कास्टिंग न्यूज और

दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म से, और इस गीत का आवाज दी है मंशिल गुजराल और अखिल सचदेवा ने।

बस ऐसे जीत के बाद चलिए अब कार्यक्रम फिल्म गपशप में नजर रखते हैं ओटीटी की अपडेट्स की ओर। दोस्तों ओटीटी पर अब स्ट्रीम हो रही है भूत बंगला। जी हाँ, भूत बंगला नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और ये फिल्म कॉमेडी और गॉस मिस्ट्री मिक्स है। आज का सबसे ट्रेंडिंग ओटीटी रिलीज बन गया है। साथ ही सख्त प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो रही है। यह फिल्म अली फजल की है, क्राइम थ्रिलर फिल्म है। आप घर बैठे भी इसका आनंद ले सकते हैं। और स्वीट मैग्नोलिया सीजन 5 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। वायरल हिट नेटफ्लिक्स पर अब स्ट्रीम हो रही है। और करपूर साउथ और हिंदी ओटीटी थ्रिलर फिल्म अब ऑनलाइन स्ट्रीम हो रही है। और वीकली ओटीटी समरी देखे तो हॉरर कॉमेडी और क्राइम थ्रिलर रोमांस सब मिक्स कंटेंट आ रहा है। नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो जो हॉटस्टार सब प्लेटफॉर्म्स अभी एक्टिव हैं। आप घर बैठे ही अब आपकी फेवरेट वीडियोस या फिर आपकी फेवरेट शोज आप देख सकते हैं। भूत बंगला सबसे ज्यादा हाइप में है। और सिंपल समर देखे तो आज कल ओटीटी पर क्राइम थ्रिलर और हॉरर कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा का मिक्स चल रहा है। सबसे बिग बच में है भूत बंगला अक्षय कुमार की। अब चलिए कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आगे चलते हैं और पेश कर रहे हैं आपके लिए नॉन स्टॉप फिल्मी गाने फ्रॉम द फिल्म भारत। और इस गीत के बोल है चसनी और इस गीत को आवाज दी है अभिजीत श्रीवास्तव और विशाल शेखर ने।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to Rs. 67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
4: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में और आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम और इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप और चलिए कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं आरआर फिल्म से गीत शोले और इसकी आवाज दी है हरिका नारायण सहिती जगंती बेनी दयाल ने

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत मधुशी की आवाज में फिल्म बाहुबली 2 से। जी हाँ, और अब फिल्मी गपशप में आपके लिए पेश है गीत सूरज की बाहों में। गाना बॉलीवुड का एक बहुत ही पॉजिटिव और फील गुड सॉन्ग है जो फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2011 का पार्ट है। दोस्तों गाने की खास बात है, इस गीत को आवाज दी है डोमिनिक सेरेजो और क्लिंटन सेरेजो लोई मेंडोंसा ने। म्यूजिक दिया है शंकर एहसान लोई ने, लिरिक्स लिखे हैं जावेद अख्तर ने। इस गाने का मेन मैसेज है लाइफ को खुलकर जीना। गाना कहता है हर पल एंजॉय करो, जिंदगी एक बार मिलती है, नए सपने देखो और नए रास्ते चुनो। दोस्तों गाने की स्पेशल बातें हैं, ये गाना स्पेन के ब्यूटीफुल लोकेशंस में शूट हुआ था। फिल्म का वाइब ट्रेवल, फ्रेंडशिप और प्रीडम को दिखाता है। इसका म्यूजिक सॉफ्ट, हैप्पी और मोटिवेशनल फील देता है। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के मोस्ट काम और इमोशनल अपलिफ्टिंग सॉन्ग्स में से एक है। सिंपल मैसेज है इस गीत की, जिंदगी को स्ट्रेस में नहीं खुशी और प्रीडम के साथ जीना चाहिए।

0: दोस्तों अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली के केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: रहते ये हमारे है साथ क्योंकि ये करते हैं दिल से।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियू की उपस्थिति में ये पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनीतिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IAM में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि तड़के करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसर

तरों के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
0: दोस्तों, कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, इस सेगमेंट पर आपकी फरमाइशी गाने हम पूरे करते हैं। तो चलिए देर किस बात की, सबसे पहले नजर रखते हैं पहली फरमाइश की। और इस वक्त हमें पहली फरमाइश आई है कार्बी आंगलोंग से, हमारे रेगुलर लिसनर टेंशन प्रो रोस मेरी टेरोनपी सार्लो एक रोजी से। और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से, गीत के बोल है प्यार कभी कम नहीं। और इस गीत को आवाज दी है बप्पी लहरी और आशा भोसले ने। आशा है आप सभी को ये गाना, आपकी रिक्वेस्ट हम प्ले कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपके फरमाइश पर ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम रेडियो जमान पर हमें रिक्वेस्ट आई है हिगी बागरा अरुणाचल प्रदेश से झुमकर बागरा जी से, और झुमकर जी ने हमें रिक्वेस्ट किया है गीत प्यार झुकता नहीं फिल्म से। गीत के बोल है हो दिल भर जानिए, और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और समीर कुमार ने। झुमकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

से। गुमे माई बागराजी और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है हनीमून फिल्म का गीत। गीत के बोल है आधा तेरा दिल आधा मेरा दिल, और इस गीत का आवाज दी है अमित कुमार और अनुराधा पाठवा ने। गुमे जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

दो साल बने हुए आकाशवाणी के अरुण एफएम पर और इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरे साथ कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड और मैं हूं आपके आज साथी दांपा। अब चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए नजर रखते हैं अगली फरमाइश की। और इस वक्त हमें फरमाइश आई है गोपुर असम से सानू प्रधान जी से, और सानू जी ने रिक्वेस्ट किया है गीत हब गर्लफ्रेंड फिल्म से गीत के बोल है तू तोरी देर ठहर जा, और इस गीत को आवाज दी है फरहान शाहिद और श्रेया घोषाल ने। सानू जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में आपकी रिक्वेस्ट पर ये गीत।

दोस्तों, इस वीक के बाद अब कार्यक्रम रेडियो डिमांड में हमें रिक्वेस्ट आए हैं रोमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लकी जी से, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गुप्त फिल्म का गीत। गीत के बोल है दुनिया हसीनों का मेला, और इस गीत को गाया है उदित नारायण ने। और रोमेश जी, रोनू जी, लकी जी ये गीत डेडिकेट करते हैं अपने दोस्त अमल, विमल और बाइकोन जी, जगेंद्र और हितेंद्र जी को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपकी दोस्ती ऐसे ही सलामत रहेंगे। आपकी दोस्ती के नाम आपकी फरमाइश गीत हम प्ले कर रहे हैं।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में रिक्वेस्ट आई है गिरन चरण जी से, कार्बियांगलोंग से, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है आंदोलन फिल्म का गीत नजर में तो जिगर, जिसे गाया है कुमार शानू और सपना मुखर्जी ने। गिरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में हमें रिक्वेस्ट आई है ज्योति सुरेन जी से, आसाम से, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत यारिया टू फिल्म से। गीत के बोल है सिमरू तेरा नाम, और इस गीत को आवाज दी है सचित तेंदुन और मनन भारद्वाज ने। ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में हमें रिक्वेस्ट आई है हमारे रेगुलर लिसनर रोमेश पात्र, रोनू पात्र, विमल बसुमतारी, जोगेंद्र रोंगवी, हितेंद्र दास, मीनल अहमद और अमल बसुमतारी जी से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत मैंने प्यार क्यों किया फिल्म से। गीत के बोल हैं साजन तुमसे प्यार, और इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम रेडियो अंजुमान में आखिरी गीत आप सभी के नाम।

दोस्तों इसी गीत के साथ ही वक्त हो चला है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर और इसी के साथ ही समय हो चला है मेरे जाने का। लेकिन जाने से पहले आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और जिनकी फरमाइशें हम आज पूरे नहीं कर पाए आपको बता दूं कि कल के सेगमेंट में आपका रिक्वेस्ट सबसे पहले लिया जाएगा, आप निराश ना रहे। उम्मीद है आप आकाशवाणी के अरुण एफएम में इसी तरह ही जुड़े रहेंगे और आपको बता दो कि आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आरजे बामिन सोमपी जी। श्रोता हमारे इस पहले प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक गैर अत तथा तकनीकी अभियंता एम जेदो। तब मुझे यानी अपना आरजे साथी दंपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। कांग्रेस सदस्यों, अमेरिकी सीनेटर और बड़ी अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। वारबर्ग पिंक्स के चेयरमैन चार्ल्स आर, प्रतिनिधि फ्रेंच हिल, प्रतिनिधि ब्रैड शर्मन, सीनेटर सिंडी हाइट स्मिथ और सिस्को के जीतू पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बोडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से युद्ध विराम को पूरी तरह लागू करने तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में हुई प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप से स्वदेश वापसी के समय तबीयत खराब होने के बाद उन्हें नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल करके मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. Sharing a Sanskrit quote, the Prime Minister said the country's Nari Shakti is the cornerstone of nation building. He added that the mothers, sisters and daughters of the nation today are enhancing the glory of Mother India with their extraordinary talent and skills in every field. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding, MOU, with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
2: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over rupees 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
1: In a social media post, Mr. Shah noted that the agreement will open the way for oil and gas exploration in the region. He added that the MOU stands out as an exemplar of India's unity, where both the states give up disputes to realize the vision for an energy independent India. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. Motor spirit and high-speed diesel are essential commodities, and uninterrupted availability at fair prices is critical for transportation of goods and passengers, agricultural operations, emergency services and national security. The centre has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems and unauthorized access to financial and digital services. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana has passed away. He was 49. According to National Rifle Association of India President Kalikesh Narayan Singh Dev, Rana breathed his last at a Delhi hospital last night. Rana recently underwent a medical procedure after falling ill during the Indian contingent's return flight from the ISSF World Cup in Munich, Germany. Upon landing in New Delhi, he was immediately hospitalized and underwent a medical procedure to have a stent fixed. Rana was serving as the high-performance coach for the Indian pistol shooters. He mentored Manu Bhakar and helped her secure a historic double bronze medal at the 2024 Paris Olympics. And that is the end of this news bulletin.
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है। प्यारे श्रोताओं, मैं आपकी रेडियो साथी पामिन सुम्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, और आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारे आज के दूसरे ट्रांसमिशन को। और श्रोताओं, इस सभा के सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं HPT में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक पी दोले और तकनीकी अभियंता AK सक्सेना। तो श्रोताओं, चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सभा के पहले कार्यक्रम को, यानी कि कार्यक्रम फिल्मी लहर को, और देर न करते हुए आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

प्यारे श्रोता, उम्र और जिंदगी में फर्क बस इतना है, जो दोस्तों के बिना बीते वो उम्र और जो दोस्तों के साथ गुजरे वो जिंदगी।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी लहर, आपकी रेडियो साथ ही बामिन सुनपे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, यानी कि पाश्चात्य गीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज, और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
2: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
1: प्यार भरे अल्फाजों में
0: दिल से दिल की बात,
1: बस आपके नाम।
0: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता भाई, अब सुनते हैं कुछ खूबसूरत गजलों को हमारे कार्यक्रम गजल में। और इस कार्यक्रम में पहला गजल हम आपको सुनवाएंगे फिल्म अमराव जान का ये गीत, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। और इस गीत को गाया था आशा भोसले ने, और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

श्रोताओ, अब हम आपको सुनवाते हैं शाहनशाह ए गजल मेहदी हसन के सबसे पॉपुलर गजल को। ये गजल जो है प्रेम और बेवफाई के दर्द को बयां करता है। इसका मुख्य आकर्षण ये है कि एक तरफ जहां महबूब नजर से गिराने की बात कर रहा है, वही गायक को यह अटूट विश्वास है कि वो उसके प्यार और यादों को कभी मिटा नहीं पाएगा। और ये गजल आज भी उस्ताद मेहदी हसन के सबसे क्लासिक गानों में से मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं इसे।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल अरुण एफएम में 103.1 MHz पर। चलिए श्रोता, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर और ये कार्यक्रम है गीतमाला। और आप सभी को पता है ये गीतमाला खास करके हमारे वीर जवानों के लिए, उनके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को।

किसी ने बहुत खूब लिखा है, मानो हमारे वीर जवान के मन की बातों को किसी ने साझा किया है। कहते हैं, हर मैदान फतेह करना जानते हैं, हम देश पे मिटना जानते हैं, हम देश की मिट्टी को माँ मानते हैं और मरते दम तक इसकी हिफाजत करना जानते हैं। और श्रोता, हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश का हर एक वीर जवान इसी मोटिव पे, इसी उद्देश्य पे खरा उतरेगा।

वो है भारत माँ के वीर सपूत, ना सताती उन्हें कोई छाव और धूप, हर राह पर आगे चलते वो दिखाते हैं कितने अलग रूप।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमाला अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah is chairing a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB are present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. The Information and Broadcasting Ministry has released the draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NETUG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people were killed and 37 others wounded as Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground yesterday. Although the demonstration started peacefully demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, the scene soon turned violent with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalkot to raise slogans against Pakistan's continued occupation and policies in the region. United Nations Secretary General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization IMO Arsenio Dominguez has condemned the attack on a Palau-flagged tanker off the coast of Oman in which three Indian seafarers have been killed. Spokesman for the UN Chief Stefan Dujarric said Mr. Guterres is deeply concerned by the continuing escalation. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana died at the age of 49 at a private hospital in New Delhi today. He mentored Manu Bhakar and helped her secure a historic double bronze medal at the 2024 Paris Olympics. President Draupadi Murmu expressed sadness over the passing of Jaspal Rana. Prime Minister Narendra Modi has also expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% up in Afternoon trade today, the Sensex advanced 653 points to 74,486, while the Nifty rose 160 points to 23,322 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

प्यारे श्रोताओं, आइए अब आपको ले चलते हैं 60s और 70s के दशक की ओर और आपको सुनवाते हैं कुछ यादगार गानों को हमारे कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s टू 80s में। और शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को हमारे पहले गीत से।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे इस गीत को फिल्म ब्रह्मचारी से, जिसे शमी कपूर के ऊपर फिल्माया गया था। तो श्रोताओ, इस कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनवाते हैं शमी कपूर के ही कुछ पुराने यादगार गीतों को। शमी कपूर को इंडियन एल्विस प्रेस्ली कहा जाता है उनकी यूनिक अंदाज, यूनिक चार्म के लिए। तो आइए श्रोताओ, आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म प्रिंस से, जवाई थी 1969 में। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: भेजा सरकार।
1: कहने थैंक्यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

आइए श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अगला गीत हम सुनते हैं फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से, जो रिलीज हुई थी 1967 में, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

श्रोताओ, आप सभी को पता ही है कि ऋषि कपूर अपने यूनिक अंदाज के लिए कितना जाना जाते हैं। उनके जमाने में जहां कोरियोग्राफर्स होते थे, बहुत ही स्ट्रिक्टली वो उनके एक्टर्स के हर एक मूव को कोरियोग्राफ करते थे, वही शम्मी कपूर थे जो अपने अलग ही अंदाज वो खुद से ही लेकर आते थे। किसी कोरियोग्राफर की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनका एनर्जी जो था, वो जिस तरीके से जंप करते थे, अपने शोल्डर्स की मूवमेंट करते थे, वो खुद का उनका अपना नायाब तरीका था जो लोगों को बेहद पसंद आया है। तो आइए श्रोता, आप हम सभी सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: चांद सा रोशन चेहरा।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s टू 80s और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए आपको हम सुनवाना चाहते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीत, तो आइए शुरू करते हैं इस पहले गीत से।

0: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी।

0: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1

0: से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कैनेडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार, और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

प्यारे श्रोताओं, अब अरुण एफएम में वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 90 के दशक के कुछ यादगार कुछ चुनिंदे गीतों को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस कार्यक्रम को इस पहले गीत के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में अगला गीत जो आप सुनने वाले हैं वो 90 के दौर का सबसे फेमस गीतों में से एक है। ये गाना जो आप सुनेंगे वो एक्चुअल में कभी रिकॉर्ड होने ही वाली नहीं थी, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस गाने को रिकॉर्ड करने से ही मना कर दिया था। लेकिन डायरेक्टर को बहुत पसंद आई थी ये गीत और उन्होंने प्रोड्यूसर से बहुत विनती की, लेकिन उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी पूरी बन चुकी है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो इस गाने के लिए हमारे पास डेट्स नहीं है, एक्टर्स के पास डेट्स नहीं होंगे। लेकिन डायरेक्टर ने बहुत मनाया और उन्होंने कहा कि फिल्म के एक्टर जो है सलमान खान, उन्हें ये गाना सुनवाते हैं, अगर उन्हें पसंद आया हो तो शायद वो अपनी डेट्स निकाले। और उन्होंने सलमान खान को सुनवाई ये गीत और उन्हें बहुत पसंद आए और वो कहने लगे कि कल के कल ही टिकट बुक कराइए, हम ऊटी जाएंगे और ये गाना रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी तरह से ये गाना आखिर में रिकॉर्ड हुई और हमें सुनने को मिला और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया इस गीत को। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म साजन से, जिसे सलमान खान और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था। अब सलमान खान की बात हो रही है, तो चलिए अगला गीत भी हम आपको सलमान खान की ही मूवी का सुनवा देते हैं। तो श्रोता, कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s पे आखिरी गीत आप सुनेंगे फिल्म जब प्यार किसी से होता है से।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे मिशमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम।

Administration khao loi tang startup India Ministry of Commerce and Industry Government of India ngai koptang Arunachal Pradesh Innovation and Investment Park si saphang tejas workshop anlang autang kayao saphang mai kun hit longka entrepreneurs self help groups artisans lakha son liklai ngai lakha ankha amu lukupa kuna chela chela mai ma si mahungnam lui kayo ho manga chela ki panyor niya yajali mai na government higher secondary school mai chahang regional anganwadi workers khau leadership workshop saphang an son hit hu otang kayo chom kham hamara anganwadi हमारा गर्व सी सफांग नै औतंग कयाओ इवन मै कुन कु लंग को मोहाम सी पा टु अटेंडेंस हन मायाओ लोकल वर्कर्स पा साउ कु महुम नंग लोई कयाओ हो न गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल चेला तवांग मै चाहंग टीचर्स अन लुक प्री प्राइमरी हथंग त क्लास 2 खौ सफांग कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम अन हावन लुक मंगा औतंग कु कयाओ सफांग नै समग्र शिक्षा अभियान खाओ तल निपुण भारत इनिशिएटिव एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन तवांग मै औतंगकयाओ मुआउटपुट हो सफांग मै डिप्टी कमिश्नर तवांग चुवा नमग्याल आंगमो फुंग प्रिंसिपल्स ने हेडमास्टर्स एंड हायर सेकेंडरी ने सेकेंडरी स्कूल्स लाई अन अनलुकचेला अंखौ मै लेम परफॉर्मेंस एंड सीबीएसई एग्जाम खाओ सी युंगयु पिचुम कयो हो वन मंगा चेला इसियांग न बालेक निया मान रायांग वान मै डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ngai कृषि विज्ञान केंद्र खौ हुमकनसी सफांग अन औहु औतोंग कनु पोंगलोय खेत बचाओ अभियान मै औतंग कयाओ प्रोग्राम मै कुन हित हैना खन हुसे को हुम नंग लोय कयाओ सफांग मै खाम नंगवा न सुन न सुन न है मै कापिनपि फर्टिलाइजर तु वाओ योम वचोम नेचुरल फार्मिंग न किसान सरथि पोर्टल मै कुन हित हैना खाउ तु पचो व्हाट्सएप आओ फन फक यु नंगवा बीच अमृत जीव अमृत वतु निसि लौखाय औतोंग कयाओ खाम नंगवा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी ngai फार्मर्स राइट एक्ट ने खाउ को लौखाय औतोंग कयाओ हो इंडियन शूटिंग कोच ngai फॉर्मर एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट चुवा जसपाल राणा मनाय हाइसम कयाओ मनचोके आशा सिसेप कौपी मै थुनसी हाइसम यो पहाय नै इंडियन पिस्टल शूटर्स खौ मै पेनसिला को लुंगसी हिट अमु कयाओ मुपी सोंगहिंग साउसी तो पेरिस ओलंपिक्स मै पपी डबल ब्रोंज मेडल जुवा मनु भाकर मै को पहाय नै सोन यु सनत कयाओ हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को योंचर लुईयाओ डिफेंस मिनिस्टर चुवा राजनाथ सिंह को योंचर लुईसी सुमलोंग सुमलांग यो नसी वा कयो हो जहांग मने खोखाम तु खेना नम हो मने मुई खाम मै मु खाम लुकचो तेवा इंगलिंग लुईतांग लुकचो सिलावा लोंकान मै हने थोम खाता

0: 좀 낭아킹 남나리는 스튜디오 마이 지간 마바파 포이네 톤시 자항 마네 함데 함디 하우드 카이 마이 솟여호
1: श्रोताओ आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम जिसका प्रसारण किया जा रहा था मीडियम वेव 444.4 मीटर पर और श्रोताओ आप हमें सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर जो कि है बॉलीवुड अपडेट।

हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा की अगली फिल्म का नाम है अल्फा, जिसका निर्माण उनके होम प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स के तहत हुआ है। अल्फा का डायरेक्शन शिव रवेल कर रहे हैं और बुधवार को इस फिल्म का लेटेस्ट टीजर भी रिलीज किया गया है। अब मेकर्स की तरफ से अल्फा की फुल कास्ट की डिटेल्स रिवील हो गई है और उनके लुक्स को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। अल्फा के टीजर में आलिया भट्ट और बॉबी डेओल की झलक देखने को मिली थी। इससे ये साफ हो जाता है कि ये दोनों इस स्पाई थ्रिलर में अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इन दोनों को टक्कर देने के लिए अल्फा में अभिनेता अनिल कपूर और शर्वरी वाघ भी अहम भूमिका में मौजूद हैं, जिसका खुलासा फिल्म के लेटेस्ट पोस्टर्स के जरिए हो गया है। गुरुवार को यशराज फिल्म ने अपने ऑफिशियल एक्स पर इन सारे स्टार्स के एक साथ पोस्टर निकाले हैं। पहले इस फिल्म को 10 जुलाई को रिलीज किया जाना था, लेकिन टीजर रिलीज के साथ ही मेकर्स ने इसमें बदलाव किया है और बताया गया कि अब अल्फा 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि यशराज फिल्म्स की टाइगर, वॉर और पठान जैसे स्पाई थ्रिलर मूवीज की तरह ये मूवी भी कमर्शियल तौर पर बहुत सफलता हासिल करेगी। तो श्रोता, ये फिल्म तो देखने को बनता है। अब इस फिल्म के गाने भी इस फिल्म के रिलीज के बाद ही आएंगे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं आलिया भट्ट पर फिल्माया गया उनकी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ये गीत।

और श्रोताओ, आज रिलीज हुई है कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता, जिसे डायरेक्ट किया है मनोज तपाड़िया ने। ये फिल्म बेस्ड है 26/11 हुई दुर्घटना के ऊपर। अब तक हमने 26/11 पर कई फिल्में और वेब सीरीज देखी है, लेकिन किसी में जाबाज फौजियों और पुलिस वालों को बहादुरी से दिखाया है, तो कहीं में डॉक्टर्स को भगवान बनाया है। लेकिन कामा अस्पताल की सिक्योरिटी करने वाले सिपाही, उनका सपोर्ट करने वाले स्टाफ और वो नर्सेस जो डॉक्टर्स से पहले मरीजों का दर्द बांटती हैं, उनकी कहानी दिखाई है कंगना रनौत ने इस फिल्म में, जो उस काली रात में पेशेंट्स के साथ अस्पताल में छिपे लगभग 300 लोग और यमराज के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। ये फिल्म बहुत ही सुर्खियां बतौर रही है। कंगना रनौत की एक्टिंग की बहुत ही तारीफ करी जा रही है। इस फिल्म का गाना तो आप बाद में सुन पाएंगे, फिलहाल आपको सुनवाते हैं कंगना रनौत की पुराने फिल्म का, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई का ये गीत है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे वांझो श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि जुनले मनी बन आनी तारीख हुकुबार इपोहांसों आजमबाजी पुनी मिनट मुख्य विषम लक्ष्यम वांचो जायका पां कपाई पवां कहवा पाई फाले वांग का वांग सुवे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए अनि ता सोशल मीडिया पोस्ट का हो मा देश मा था पों ए मीनु शकोधम पांगनु होली होमोको सजू तो खटखा क्या होमोको सद मी अंग हाकवोन ले स्वाकनले बोमा मीनुषको थम ड्रोन टेक्नोलॉजी निंका होजन होजन होमोक होसत लमतलन ले हकवोन ले हाइक्या ए देश मा होजन होजन होमोक होसत जानपों अलाय आदन लफाक्या बो मा डेवलपमेंट मोथो सजु आजे आजे ले जो मई अंग सतनुते ले ले वन ले मिस्टर मोदी ए होम एनडीए गवर्नमेंट ले एन के जंग पुंबन आनी बामा वोमेन लेड डेवलपमेंट तामताई ले आचन अचोंग अंग मोकसाहु डपु बोम हाजा शुक अथा पांगनु होमोकोस सेक्टर तो जो ngan ले सतना बोम गवर्नमेंट ए मीनु शको थम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हान पंग मा मोंगनु सा ngo te ke self help group ssg ho thum po to khle yo so nu phong ngo te pu le chu van le मिस्टर ताइता गक अरुणाचल प्रदेश अंक या राज्यसभा एमपी अंग आन ओपोस्ट मा कामजिंग दवा हजा बामा स्टेट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए हज ताई तागक अंग ची मोमका हो अंतो ले ची मा पब्लिक मोथो सजू तो तल्ले यो मोकसा दोके एक्सपीरियंस तै नंग तै को ले तागक ए पार्लियामेंट तु तो अरुणाचल प्रदेश संके मोंगते कन सुंका अंग फो सा का जोंग ले यो ngaiwan le chok angka le ong hu tai pu le van le स्टेट मालाइडन क्या लोकल तोयमोट प्रोडक्ट्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट तोलन ले अहाई अपेले स्वक्ले स्टेट मा एक्सपोर्ट होमोक होसत होलम फन आसाकमई अंग आजोंग अमोंगिता खटखा क्या यो मोथो चेन मा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स होथम ए ईटानगर मा ता एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल दाबजिंग अंक्या हानपंगमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होथम खा मता ऑटोनोमस होथम अंग मोकोसाले ngo तेक्या कोलकाता होनुइ तोक्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आईआईएफटी होथम फाइ मनी ता एमओयू का फन लाइंगा तो टिपसिंग लाइ जादो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट लिकाबाली होनुइ मा मनी डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल मा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बीएलओ सुपरवाइजर्स बूथ लेवल ऑफिसर्स आईटी स्टाफ इलेक्शन मोड सत अंक्या डीलिंग असिस्टेंट्स थम हिया मामो इलेक्टोरल ऑफिसर्स थम अंग ईआरओ नेट हिया बीएलओ एप चोने जो ट्रेनिंग अपोनो लको ओतोन अंगता ट्रेनिंग प्रोग्राम टू सो अंगोट असोले कौमा अजंग वाजे ट्रेनिंग प्रोग्राम इलेक्टोरल सर्विसेस फन तामताई ले अमई आजों अंग अथापोंग ए मोकोसाले ngo taikya motho angketa motlung sen ma angot asokya changla Namsai district administration tham a government of india ministry of commerce and industry angkya startup india here arunachal pradesh innovation and investment

अरुणाचल प्रदेश सरकार कौशल विकास एवं उद्यमिता संस्थान ईटानगर द्वारा एक जरूरी सूचना। रोइंग ताबारिजो दिरांग बालीनोंग यूपिया मानीपोलियांग जीरो आईटीआई विमेन सागाली लुमला कानुबरी और पंगिन में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि आईटीआई में विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 14 वर्ष या उससे अधिक आयु के उम्मीदवार प्रवेश के लिए पात्र है। आवेदन अरुणाचल प्रदेश सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के वेब पोर्टल skill.arunachal.gov.in/admission-process पर उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल इसी पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा करने होंगे। पोर्टल से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सुमन शुक्ला 9990868004 पर, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं विवेक रतूरी को 9548223780 पर। और इसके अलावा आप अपने नजदीकी आईटीआई संस्थानों में भी जाकर जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं।

किसी बहुत ही खूबसूरत महिला के लिए, एक प्रिटी वुमन के लिए किसी ने ये बहुत खूब लिखा है ये शायरी। चांद की रोशनी सी है जिसकी आंखें, अदा एक खास रखती है वो, हर लिबास जचता है उसपे, हर रंग में कमाल लगती है वो।

0: आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे इडू मिसमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर थालापुची जिहोलुनी मेटुबेली एतानी इडू मिसमी आहोला के जी दरगालंबो इंडिया मा ची जो ना आम आयोका दोने स्पोर्ट्स के जनता मामा प्रभा ज्योतिका जिदा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में लगाने हुलुनी नुबा एनडीए गवर्नमेंट मा याकू में जोनेगा गवर्नमेंट में जनता मामा प्रभा जोगादा ला होगा याको लम्बर में आम है को इनका नवचा गवर्नमेंट में याकू सेल्फ हेल्प ग्रुप अनम्रो आरोग्य जिदा ने प्राइम मिनिस्टर में लाओगा दा आओगा ताई तागक में दिमाग अंगा बने मुई राज्यसभा एमपी श्याम बचा है प्रविधान ने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में लगाने जो अपुया गए तागक में एमपी शाते के माने पार्लियामेंट में अरुणाचल प्रदेश में चेको बप्या अखाय बाउची मा उजिदा लगाता आहोगा अरुणाचल प्रदेश में चे इमु में हाथुमु आपिपू गए आई दोने तारी दोने अंजी अजिया गए ची अवता आमे उमा आरोगा उदाला ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट मचे ट्रेड दोने कॉमर्स डिपार्टमेंट में कोलकाता मचे आईआईएफटी को एमओयू अनबोआ देपा अली आउता आमे वे मा आरया एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल ईएफसी के ईटानगर मा आज तेगा उदा ला होगा आ एमओयू है बुनी ईटानगर चे सिविल सेक्रेटरी मने ट्रेड दोने कॉमर्स सेक्रेटरी बोलू मामू डायरेक्टर संयोग मोदी कोलकाता आईआईएफटी मचे हेता डॉक्टर के रंगाराजन दोने ईएफसी कोऑर्डिनेटर सुमना दास जिगा मने बहुत तिगा बता आहोगा यूरोनेट दोने बीएलओ एप चिपुआ इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर असिस्टेंट इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ब्लॉक लेवल ऑफिसर सुपरवाइजर ब्लॉक लेवल ऑफिसर आई टी स्टाफ दोने इलेक्शन डिपार्टमेंट मा जया एक इमो नम्रो ट्रेनिंग आई हो जा बुनी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट लिखा बल तिकोचि डी सी ऑफिस मने ट्रेनिंग प्रोग्राम आखने वाला था ला होगा नामसाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में स्टार्टअप इंडिया गोप्त ऑफ इंडिया मचे कॉमर्स दोने इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आई दोने अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन दोने इन्वेस्टमेंट पार्क पी आई आई पी गो आरोगा गने बुनी नामसाई आतिकोने तेजस वर्कशॉप आखनेगा मा डीसी सीआर खाम्पा में छिजा बने आ मा आहित में आतिका मा छिगा अंजी माने आम पे आयोजित ना लाइव आओगा कई पनीर डिस्ट्रिक्ट मचे आंगनवाड़ी वर्कर आनबो के बने बुनी याजली गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल माने आंगनवाड़ी लीडरशिप वर्कशॉप आखनेगा मा आ डिस्ट्रिक्ट मचे मावा निरू होया आंगनवाड़ी वर्कर आनबो में गिगा बने आज आ नंबर को हम शिका करने आज आई वो चीज पर ट्रेनिंग आई तो बता आ होगा बुनी

0: ताउन आतिगछि गभर्मेन्ट ताउन सेकेन्डरी स्कुल माने एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ निपुण भारतको को माने समग्र शिक्षामा माङानिगा भने नर्सरी माने क्लास कानिमा लिभाचि आज हिया टिचर हाम्रो ट्रेनिङ आइपुगम्बा देशी नाम ग्याल आङमा आइपा बता आउगा लिभाचा सिबिएसई एक्जाममा म्यान हाम्रो प्राय आइबा आहिया गभर्मेन्ट स्कुलमा माचे प्रिन्सिपल दोन हेडमास्टर हाम्रो हे दिसी मे अवार्ड हाँ पता आओगा हाय थनाओगे बने पाकुमा केमिकल फर्टिलाइजर तामा एठोगा ची महो पाकुमा केमिकल मरा खाजी बने हाथुम मागो केमिकल मरा क्या बोचा उगने केमिकल तामा पाकुमा एठो ची नाने सियांग डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अलग में के बने आ डिस्ट्रिक्ट माचे आसुनो है अतिकोमा पाकोचे लिखी बुए लाने आहा ऐचला पुची ऐहो माचे ने कैंपिंग अखपगम बमहो लगाता आहोगा आहा एशियन गेम्स अगरे ओमगा मने गोल्ड मेडल आनेगा ऐडो ने मैं आनंद रो पिस्तौल ओ आहेगा कपड़ों खींचने जसपल राना है शिवदा आहोगा आ मैं मनु बाकर ओ आही ने इनो एचआर का ने अन्य हो का पी माचिनो पेरिस ओलंपिक्स माने ब्रांच मेडल कानी आने जिगा आरो बचिदा लगा आ महो जसपल राणा सीतू बचा है सीताना बिदा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह दोने किशली रान रूमे लाहें दगादा आहोगा एतनिची ईद मिशमी आहो अलीमाओ दबाए एचा आकाशवाणी ईटानगर दिब्रुगढ़ नाले ईद मिशमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अनहोसो खियामा हो एतनि हेंदो
1: योना मेलेची चाशेची अनजी

श्रोताओं, आप सुन रहे थे ईदो मिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम। इनके आगे के कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप ट्यून इन करिए आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। आप इनके आगे के सभी कार्यक्रमों को सुन पाएंगे। और श्रोताओं, आप हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सभी कार्यक्रमों को सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोता, हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रमों को जारी रखते हुए आपको सुनवाते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीत।

मरीज़े इश्क हो तेरा दीदार काफी है, हर एक दवा से बेहतर निगाह यार काफी है। और मेरी नजर से कभी खुद को देखना, तुम खुद ही खुद पर फिदा हो जाओगे।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीत का ये आखिरी गीत, और अब से थोड़ी देर में यानी कि 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांसा श्रोताओं का कार्यक्रम। और श्रोता, उसी के साथ ही समाप्त हो जाता है हमारा आज का दूसरा ट्रांसमिशन। पर आप कहीं जाइएगा नहीं श्रोता, क्योंकि अभी हमारे तीसरे प्रसारण के लिए आपके साथ जुड़ेंगे आरजे सुलोकना। अब श्रोता, मुझे यानी कि आपकी रेडियो साथी मामिन सुम्पी को दीजिए इजाजत, और आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz पर।

वेल दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं अभी आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर एवं अरुण FM के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार श्रोता दोस्तों, दिन अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और शाम अपने साथ लेकर आई है सुकून, ताजगी और कुछ खूबसूरत एहसास। ऐसे ही सुखद माहौल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। इससे पहले यानी कि दूसरी प्रसारण सभा में आप बने हुए थे आरजे सुम्पी के संग और अब मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुलोकना और अब से लेकर रात्रि के 9:30 तक इस तीसरी प्रसारण सभा में आपके संग रहूंगी। यही आकाशवाणी ईटानगर खैरून एफएम पर संगीत, मुस्कान और कुछ दिल छू लेने वाली बातों के साथ। इस सभा के विभिन्न कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं तमाम एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा। तो चलिए इस खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बनाते हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे ज्ञान और मनोरंजन का सेगमेंट गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

गुलाबी आसमान में जब परिंदे लौटते हैं, मन की किताब में नए पन्ने खुलते हैं। और दोस्तों, आप सुन रहे थे लो सफर शुरू हो गया। वाकई शुरू हो गया है सफर इस तीसरी प्रसारण सभा का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के साथ। आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।

जुबिन नौटियाल की आवाज में आप सुन रहे थे लो सफर शुरू हो गया। और अब इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। कहानी का शीर्षक है धन्यवाद।

तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति को हमेशा शिकायत करने की आदत थी। मौसम ठीक ना हो तो शिकायत, काम ज्यादा हो तो शिकायत, लोग समझ ना पाए तो शिकायत। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक दिन वो एक मंदिर के बाहर बैठा अपनी परेशानियां गिन रहा था। तो जैसा कि आपने सुना कि वो आदमी एक दिन मंदिर के बाहर बैठा अपने परेशानियां गिन रहा था, वही पास में एक साधु शांत भाव से बैठा मुस्कुरा रहा था। व्यक्ति ने उनसे कहा, मेरे जीवन में तो बस समस्याएं ही समस्याएं हैं। साधु ने उससे पूछा, आज सुबह आँख खुली? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ। फिर साधु ने पूछा, खाना मिला? फिर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ। चलने के लिए पैर, देखने के लिए आंखें हैं? तो फिर वो व्यक्ति चुप हो गया। तो वे संत बोले, जिसके पास इतना कुछ है, अगर वो सिर्फ ना होने वाली चीजों को देखेगा तो दुखी ही रहेगा, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करेगा, वही सच्चा सुख पाएगा। उस दिन उस व्यक्ति ने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर रात सोने से पहले वो तीन बातों के लिए धन्यवाद करता। धीरे धीरे उसकी शिकायतें कम होने लगी, उसका मन हल्का रहने लगा, रिश्ते सुधरने लगे और जीवन में शांति आने लगी। शिकायतें कम और धन्यवाद अधिक करने से ही जीवन सुंदर बनने लगता है।

कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड हमारे देखने का नजरिया बदल देती है जब हम अपनी शिकायतों के बजाय अपने आशीर्वादों को गिनना शुरू करते हैं तो जीवन हल्का और सुंदर लगने लगता है। इसलिए नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाती है बल्कि इसलिए कि हम उन्हें अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान देना छोड़ देते हैं। हर दिन परिपूर्ण नहीं होता फिर भी हर दिन कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होता है जिसके लिए धन्यवाद या फिर ग्रेटिट्यूड दिया जा सके। एक नई सुबह, भोजन, अपने प्रियजन, अच्छा स्वास्थ्य, जीवन के सबक और आगे बढ़ते रहने की शक्ति।

तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुछ ऐसा जहां हम बनाए फिल्म, बस इतना सा ख्वाब है से। बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हर रोज की तरह आपको आज का यह अंक भी बेहद पसंद आया होगा। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, और फिर आप सुनेंगे नौकते श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। हम फिर हाजिर होंगे शाम के 5:05 पर, लेकर आएंगे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। यही आप बने रहिएगा हमारे साथ और कुछ

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किए। राज्यसभा में राज्यसभा सदस्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश से ताय तागाक निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राजधानी ईटानगर में एक्सपोस फिल स्टेशन सेल स्थापित करने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। नामसाई जिला प्रशासन ने भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम तथा अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क के सहयोग से नामसाई में तेजस कार्यशाला का आयोजन किया। राष्ट्र परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों के ले जा रहे तेल टैंकरों पर हमले की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जलपास राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुले हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राज्यसभा में राज्यसभा सदस्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश के ताय तागाक निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि वर्षों से राज्य की समर्पित सेवा करने के बाद अब वे राष्ट्र स्तर पर राज्य के लोगों की आशाओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के व्यापार एवं वाणिज्य विभाग ने भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कोलकाता के साथ ईटानगर में एक निर्यात सुविधा प्रकोष्ठ यानी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल EFC स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। EFC की स्थापना राज्य सरकार के व्यापार को बढ़ावा देने, व्यवसाय सुगमता में सुधार लाने तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा और बाजार एकीकरण को मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के विजन को समर्थन देने के प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं स्थानीय व्यवसायियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नामसाई जिला प्रशासन ने भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम तथा अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क के सहयोग से नामसाई में तेजस कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिले भर से उभरते उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, शिल्पकारों, विद्यार्थियों तथा रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं ने भाग लिया। राष्ट्र परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों के आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित किए जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ओएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने ओमान में तट पर पलाव के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक भी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफेन दुजारिक ने कहा है कि गुतरस लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित है। वो आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि ये स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रूपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रूपये और प्रतिमाह 24,00,000 रूपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि यह वीडियो फर्जी है। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजी के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया है वो प्रेरणादायक है। फीफा विश्व कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मेक्सिको में दापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मेक्सिको के साथ होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मेक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से पराजित किया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे चेन यूसू को 21-6, 21-9 से हराया था। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से यह प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के निक शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने और गरज के साथ ओलावृष्टि का भी अनुमान है। विभाग ने अगले 4 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की आशंका है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 15 जिलों ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, कुरुंगकुमे, क्रादादी, अपर सुबनसिरी, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, लेपारादा, लोअर दिवांग वैली, अंजाव, नामसाई, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक विक्रेता केंद्रों से ही लेना चाहिए। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: This is Akashvani, the news read by Priya Badu. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, health care, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, Prime Minister Modi noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Prime Minister Narendra Modi added that the government is actively supporting self-help groups, which is going a long way in making women financially independent. The Prime Minister further underlined that the efforts of the government are rooted in dignity, opportunity and empowerment, which helped in creating an environment where women can realize their full potential and contribute even more strongly to nation building. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said the restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 liters of high-speed diesel to a consumer to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah chaired a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Director Generals of the CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB were present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th August. President Draupadi Murmu arrived in Dehradun today on a two-day visit. She was welcomed by Uttarakhand Governor Lieutenant General Gurmit Singh, retired, and Chief Minister Pushkar Singh Dhami upon her arrival. As per the scheduled program, the President will visit Rashtrapati Niketan in Dehradun today and inspect the ongoing construction and development works of the Rashtrapati Udyan being developed over an area of 132 acres. National Testing Agency has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for RENET UG 2026 scheduled to be held on the 21st of this month. The new timing will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The agency said that it is committed to ensuring that NEET 2026 UG examination is conducted in a manner that is fair, secure and responsive to the needs of the candidates. Information and Broadcasting Ministry has released the draft Telecommunications Rule 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The ministry said these rules are designed to simplify and harmonize the existing regime while promoting ease of doing business in the television and radio broadcasting sector. These draft rules have been published on the website of the Ministry of Information and Broadcasting, and the public can submit their comments and suggestions on the draft till the 27th of July. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron will jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday. Talking to Akashvani News, Ambassador of India to France, Sanjeev Singla said that the idea is to showcase some of India's best deep tech talent outside of India, which has been curated by the Ministry of Education. He informed that there are over 120 deep tech startups covering 13 areas which have been selected from over 1,200 startups. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit Nice, France on the 14th of June as the first stop of his two-nation European tour covering France and Slovakia. The city seat carries special significance as it will be his first bilateral summit with President Emmanuel Macron since the two nations elevated their ties to a special global strategic partnership in February this year. That is all in this news bulletin. Namaskar.
5: आप सुन रहे थे हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोताओं अभी आप सुन पाएंगे नोक्टे श्रोताओं का कार्यक्रम।
6: आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़ रंगजा वन बंगा बाजिसान पोट डंगे ने नानोक्टे प्रोग्राम चौथा दिन ठजा जुन्जांग होगुर बजा निंथोए का तेलियन तांगजांग मा छुन्तवा छिपानी रंगपा खनको NDA government pema dihake tuan seven ngale dihake chentok kam ngenang ruam seven ngenang aja atham kam he dangmang kavaniki ngama prime minister Narendra Modi lojabika dihake athahe education health care sanitation housing ngale khiena ko luam ngale government soleven le drone technology he soleven ngenang toming dihake lamsan tepa aja atham paladang wangtha jong ama prime minister Narendra Modi ma social media nang post won lamangin pa choy thuk jo reka nang state te tai tagak pa rajya sabha mp rang an oppose ma elect pa lahon karak pa ar elect khon ka chuang ko chief minister Pema Khandu mangeng choy thuk ta ko tai tagak pa nang state ko wante kapu phan nang senior leader pa jo dangkoi ka erowate state pama rajya sabha nang mp rang chenka de ki pama tai ta ga ma ate aja tham experience tonga jun ko nang state rang ma aja tham kam sen pe jo eta hongbo kawin ko hinga ma akha pa hone ki nga ma chief minister ma choye thuk jo re ka nang state paming export ecosystem pa ta hor ma rang ngale state kwa local chakam product se international market nang ताची मिंगवन ठुकरांग स्टेट को ट्रेड ले कॉमर्स डिपार्टमेंट मा कोलकाता वा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड डम को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू सुही वन थे मजा लाहौर मिलता अरे एमओयू सुही होन में का जिन को ईटानगर नंग एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल वन थे होन में जोबिंग इलेरा अरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड पा कॉमर्स ले इंडस्ट्री मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खन के जो सोले का ईटानगर नंग एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल पा मतादांग थाको स्टेट को लोकल प्रोडक्ट्स छखम हे बाहिक दिया नंग एक्सपोर्ट ताहन छो रंग वंथे अडोंग तो चोपा एता दांगवांग रा नामसाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मा स्टार्टअप इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ले इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाले अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन गाले इन्वेस्टमेंट पार्क APIIP डम का रोम लामा मजा Tejas workshop wante kokam losirika are workshop pa district ko local business solete tongwa ga he promote ta hoim rang thamla ma jo losirika are workshop dangta ko aja atham entrepreneurs self help group artisans ngale students se jo khon rok pa are workshop pa dc cr khampa ma banglo se ku pika ko he maro mor kadman minga ngale maro bosa minga खेत बचाओ अभियान कैंपिंग कपनी रखन को मजा ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट वा बालेक नंग डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस नेमा अवेयरनेस प्रोग्राम वंटे को कम लोसे अरे प्रोग्राम को रोग्राम अबातो रंग पिग मोटे फार्मर्स से जो कोन हवा हुआ गाले अरे प्रोग्राम को फर्टिलाइजर्स फम हे मरो सोले मिंगा गाले नेचुरल फार्मिंग हे मरो मोर कार्बन मिंगा गाले किसान सराठी पोर्टल को फार्मर्स से मा रजिस्टर्ड पा महोर मन मकरा को मरु लाभ पा ताचु वन मिंगा गेंग हे जो अजा थम पा फार्मर्स से नंग चो ये चुवा नंग दिया ते वन थे रिनाउंड कोच गले मा को एशियन गेम्स नंग शूटिंग नंग गोल्ड मेडल चो तुन जसपाल जसपाल राणा पा लालम मारी छोंटा अते रोबली पाई खुरंग पा डंग तुन नंग ते मा

0: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नौकते श्रोताओं का समाचार। आगे इस कार्यक्रम को पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है। और हाँ श्रोता दोस्तों, आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर एवं अरुण FM के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं।
1: Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
2: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम इवनिंग ड्राइव।

कभी कभार कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो हमारे कानों तक आ पहुंचते हैं और हम सोचते रहते हैं कि ये कहीं तो सुना था, इस गीत के बोल किसने लिखे होंगे, ये कौन से फिल्म का है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अभी आप सुन रहे थे तू हर लम्हा, अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म खामोशिया से, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2014 में। और इसी गीत के साथ ही हमने शुरू कर लिया है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का सफर, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
1: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, सब घर पहुंचने की जल्दी में हैं। लेकिन दोस्तों, आज स्टूडियो आने से पहले मैंने रास्ते में एक ऐसा नजारा देखा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक इंसान बाइक चलाते हुए कान में फोन लगाए किसी से बात करने में इतने मशरूफ थे कि उन्हें सामने से आती स्कूटी दिखी ही नहीं, क्योंकि वहां तो एक मोड़ था। वो तो गनीमत है कि एन मौके पर ही ब्रेक लगाया गया, वरना एक बड़ा हादसा तय था। तभी तो कहते हैं ना कि कुछ पल का फासला, नजर हटी और दुर्घटना घटी। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे 2 मिनट की तो बात है, फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। पर सच मानिए दोस्तों, वो 2 मिनट का फोन कॉल आपकी या सड़क पर चल रहे किसी मासूम की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कोई भी कॉल, कोई भी नोटिफिकेशन आपकी जान से बढ़कर नहीं है। अगर बहुत जरूरी बात करनी ही है तो प्लीज गाड़ी को साइड में रोकिए, बात कीजिए और फिर आगे बढ़िए। तो यही उम्मीद है।

और इसीलिए दोस्तों मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा।

बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए। कबीर सिंह के इसी गीत के साथ ही दोस्तों कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप ख्याल रखिए और साथ ही हमारे साथ बने रहिए। जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अब से कुछ ही पलों में हम फिर हाजिर हो रहे हैं लेकर कार्यक्रम शाम की महफिल, यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: प्रस्तुत है एक सूचना, आईटीआई भर्ती सूचना। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग, ताबारिजो, दिरांग, बालिनोंग, यूपिया, मानिपोलियांग जीरो वीमेन आईटीआई सागाली, लुमला, कानुबारी और पांगिन आईटीआई में अलग अलग ट्रेड्स के ट्रेनिंग के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। 14 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी इच्छुक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन भरना होगा इस पोर्टल पर skill.arunachal.gov.in। एक बार फिर सुने, skill.arunachal.gov.in पर। पोर्टल से जुड़ी किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए संपर्क करें मिस सुमन शुक्ला, नंबर है 9908680004। एक बार फिर फोन नंबर है 9908680004, या फिर मिस्टर विवेक रातुरी से भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 9548223780। एक बार फिर सुने, मिस्टर विवेक रातुरी का नंबर है 9548223780। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी आईटीआई संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

हेलो नमस्कार और गुड इवनिंग डियर लिसनर्स, आप सभी को ये खूबसूरत शाम मुबारक है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM और पेश कर रहे हैं हम सबसे सुकून भरा कोना लेकर आई हूँ कार्यक्रम शाम की महफिल।

संग में हम आपके लिए पेश करते हैं सॉफ्ट सूदिंग हिंदी नगमे। हमने शुरुआत की रात दिन तेरे ख्याल से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने।

कुछ गाने ऐसे होते हैं सुनकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो, और कहते हैं कि यही तो जादू है सच्चे सुरों का।

0: देख पाते हैं कहां हम तुमको, दिल कहीं होश कहीं होता है। वैसे दोस्तों, आप सुन रहे थे कहीं कहीं से हर चेहरा, आशा भोसले, लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज में, एल्बम दिल कहीं होश कहीं से। कार्यक्रम शाम की महफिल में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

कायदे से देखा जाए तो प्यार का ये सिलसिला कभी पुराना नहीं होता। और हाँ, आप सुन रहे थे कायदे से अरिजीत सिंह के आवाज में फिल्म मेट्रो इन दिनों से।

अगले गीत से पहले प्रस्तुत है एक विशेष सूचना। आईटीआई एडमिशन नोटिस। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग, ताबारिजो, दिरांग, बालिनोंग, यूपिया, मानिपोलियांग जिरो, विमेन आईटीआई सागाली, लुमला, कानुबारी और पांगिन आईटीआई में अलग अलग ट्रेड्स की ट्रेनिंग के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। 14 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी इच्छुक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन भरना होगा। पोर्टल है skill.arunachal.gov.in। एक बार फिर सुने skill.arunachal.gov.in। पोर्टल से जुड़ी किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए संपर्क करें 9908680004 या फिर 9548223780। नंबर्स एक बार फिर 9908680004 या फिर 9548223780। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी आईटीआई संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं।

0: श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम शाम की महफिल में आज के लिए बस इतना ही। आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप सुनेंगे एन इंटरव्यू ऑन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2026। बने रहे इस खास अंक के लिए अब से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM 103.1 MHz और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त निदो यांगा। तो श्रोताओ, आज के दिन यानी 12 जून के

0: संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जा रहा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे का अधिकार है एक सुरक्षित बचपन, अच्छी शिक्षा और एक बेहतर भविष्य। बाल श्रम ना सिर्फ बच्चों का बचपन छीन लेता है बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर भी असर डालता है। आइए हम सब मिलकर इसके खिलाफ जागरूकता फैलाएं और हर बच्चे के अधिकारों की रक्षा में अपना योगदान दें। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद है, एलिजाबेथ तंजांग मैम, करेंटली सर्विंग एज एडमिनिस्ट्रेटर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 WCD कंट्रोल रूम। तो एलिजाबेथ मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अरुण FM के स्टूडियो में। तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके नजरिए से चाइल्ड लेबर क्या है और क्या आपको लगता है कि आज के समय में ये भी एक बड़ी समस्या है?
1: जी, ये चाइल्ड लेबर जो है बहुत बड़ी समस्या है। और ये चाइल्ड लेबर ये है कि जो बच्चे जो टिल 18 इयर्स का जो जितना भी एज ग्रुप है उनको जब चाइल्ड लेबर लाइक कि आपका उन लोग को काम में लगाया जाता है विदाउट एनी एजुकेशन, तो उन लोग को चाइल्ड लेबर बोलते हैं, उनको चाइल्ड लेबर में कैटेगराइज करते हैं। एंड दे आर डिप्राइव ऑफ देयर चाइल्डहुड एजुकेशन, हेल्थ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। तो इनको चाइल्ड लेबर का अंडर में हम लोग ग्रुप कर देते हैं, जो अपना फ्रीडम नहीं है, जो दूसरों के लिए काम करते हैं उनको हम लोग चाइल्ड लेबर बोलते हैं।
0: जी, तो मैम कौन से मुख्य कारण है जो बच्चों को मजदूरी करने पर मजबूर कर देते हैं?
1: अभी जनरली ये ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चे, क्योंकि इनका उन लोग का डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होते हैं, तो उनको ही मतलब चाइल्ड लेबर में एम्प्लॉय कर देते हैं उनका माँ पिताजी। उन लोग कंपेल हो जाते हैं कि उनको चाइल्ड लेबर का काम में ये एंगेज करने के लिए। सो मेनली इट इज ऑल ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम।
0: तो मैम, आपका कितना साल हो गया है इस चाइल्ड हेल्पलाइन में काम करते हुए?
1: चाइल्ड हेल्पलाइन में काम करते हुए मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन 2018 से मैं कर रही हूँ। तो 2018 से टिल अभी मैं चाइल्ड हेल्पलाइन में चाइल्ड हेल्पलाइन उसी में कर रही हूँ।
0: तब तो आपने बहुत सारा केसेस ऐसा देखा होगा
1: जी,
0: तो आप हमें थोड़ा तो बता सकते हैं कि आज ये 2026 में कितना ऐसा केसेस आया है?
1: पहले का आंकड़ा को मैं नहीं दे सकती, लेकिन 2023 से मेरा जो ये है नंबर्स है वो 481 प्लस है हमारे यहाँ पे। okay. जितना भी केसेस हैं 481 केसेस हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं। बट देन देयर आर मोर देन 1000 ऑफ केसेस, बट देन उसको हम लाइक कि अभी का रिकॉर्ड में हम नहीं लाया है। जो 2023 से लेके जब से हम लोग इंटीग्रेटेड हो गया है विद WCD कंट्रोल रूम, जब से हम लोग इंटीग्रेटेड हुआ है तब से आज तक हम लोग अभी 481 प्लस केसेस हम लोग ने ले लिया है।
0: तो मैम, आपके हिसाब से चाइल्ड लेबर का बच्चों पर शारीरिक और मानसिक रूप से क्या असर पड़ता है?
1: ऑब्वियसली उन लोग बहुत ट्रॉमाटाइज होते हैं, बिकॉज कभी कभी बच्चों को जस्ट चाइल्ड लेबर नहीं तो डोमेस्टिक हेल्प के लिए नहीं होता है, उन लोग को रखते हैं पर उनको एब्यूज भी, फिजिकली एब्यूज भी करते हैं, मोलेस्ट भी करते हैं, तो उन लोग बहुत ही ट्रॉमाटाइज होते हैं फिजिकली एंड मेंटली।
0: तो मैम, क्या अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ चाइल्ड लेबर ज्यादा रिपोर्ट होता है?
1: हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादातर केसेस हमको यहाँ पे पपमपरे डिस्ट्रिक्ट में ही मिले हैं ज्यादातर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो हर कोई ऑफिस वर्कर्स है, ऑफिस गोअर्स है, तो उन लोग अपना घर संभालने के लिए चाइल्ड लेबर एंगेज कर रहे हैं। और उसके बाद में और डिस्ट्रिक्ट में भी है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट भी है, लेकिन ज्यादातर हम लोग पपमपरे डिस्ट्रिक्ट में ये चाइल्ड लेबर को अभी हम लोग ने देखा है ज्यादातर।
0: तो चाइल्ड लेबर ज्यादातर मतलब कहाँ का आपको देखने मिलता है? अरुणाचल का ही रेसिडेंट या बाहर से भी आता है?
1: ज्यादातर चाइल्ड लेबर बच्चे जो है उनको असम से लाया जाता है। दे आर बीइंग ट्रैफिक और दैट इज वो हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन के जरिए जो हम लोग बच्चों का स्टेटमेंट नहीं तो उनका जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं तब उन लोग बताते हैं कि उन लोग को कभी कभी किडनेप किया जाता है, कभी ट्रैफिक किया जाता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक कि चाइल्ड लेबर जो बच्चे हैं वो लोग असम से आते हैं।
0: ओके मैम, तो मैम क्या आपने कभी

0: चाइल्ड लेबर रियल लाइफ केसेस में देखे है? अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, तो बता सकते हैं क्या?
1: ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर केसेस हमने बहुत सारे केसेस सॉल्व किया है, पर एक दो जो मेरा दिल में बहुत छुआ है वो ऐसा है कि एक 6 ईयर्स का एक लड़की था, तो वो खुद ही एक बच्चा है, फिर भी उसको चाइल्ड लेबर के लिए एक घर में रखा गया था। एफ्लुएंट फैमिली में था, तो एक बार बच्चा जो खाना अच्छा से नहीं बनाया ना किया, तो उसके लिए मालिक और मालकिन बहुत गुस्सा होके उसका पीठ में उसको पूरा ऐसे नाइफ से काटा है उसको ना, और वो पूरा ब्लीडिंग हो रहा था और फिर पेट में भी मारा है। तो जब हम लोग को ये खबर मिला, इन्फॉर्मेशन मिला है, तो हम लोग जाके बच्चा को रेस्क्यू किया है, विद द हेल्प ऑफ पुलिस हम लोग जाके रेस्क्यू किया है बच्चा को। तो हमने देखा है कि उसका पीठ जो पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, और क्योंकि उसको पूरा किक मारा था पेट में, तो उसके लिए वो चल भी नहीं पा रही थी बच्चा, ऐसा है। और अनदर केस में देखा है, एक लड़का था, उसको भी एक मालकिन ने उसका माथा में ग्लास से मारा है, एंड देन उसका माथा जो पूरा फट गया था, तो उसको भी हम लोग ने, वो रात का 10:30 बजे ऐसा था, तो इसलिए हम लोग ने फिर मेडिकल में उसको ले गया 11 बजे, 11:30 रात का नाइट था, मिडनाइट हो गया था, फिर भी डॉक्टर ने उसको, फिर बच्चा का 11 स्टिचेस कर दिया था उसका हेड में, इंजोर हो गया तो पूरा सिलाई स्टिच कर दिया। और दूसरा था एक लड़की शिलोंग से था, उसको भी इतना मारा है कि उसका बॉडी जो है पूरा आयरन रॉड जैसा हो गया, इतना हार्ट हो गया उसका आर्म्स एंड थाइस। तो जब हम लोग ने उसको भी फिर डॉक्टर को, वो भी नाइट का ही केस था, ज्यादातर हम लोग रेस्क्यू जो करता है नाइट को, क्योंकि उन लोग भागता है और ऐसा ना, तो इसलिए हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन देता है, उन लोग भी बोलता है कि डर होता है तो आप लोग छुपके से आओ ऐसा होके, हम लोग तो उसको भी हम लोग ने रात का 10:30 ऐसा कोई रेस्क्यू किया था। तो उसका भी बॉडी जो इतना खराब हो गया था, तो जब मैंने डॉक्टर को पूछा कि सर क्या हुआ, तो बोला है कि उसको इतना मारा गया कि उसका ब्लड ये हो गया, क्लॉटिंग हो गया ना ऐसा। तो देर आर लॉट्स ऑफ सच केसेस वे वी हैव कम अपॉन की ये जो बच्चे जो है उन लोग को फिजिकली अब्यूज करते हैं, एंड देर आर लॉट्स ऑफ केसेस ऑल्सो वेयर दे हैव बीन मोलेस्टेड।
0: ये जो कल्प्रिट होते हैं ना, ये सब केसेस की कल्प्रिट, उन्हें कुछ उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया गया है क्या?
1: हाँ, क्योंकि हम लोग ये करते हैं, लाइक कि जब हम लोग रेस्क्यू करते हैं, वी प्रोड्यूस द चाइल्ड टू द CWC और टू द DCPO ना, तो जब ये करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग केस भी FIR भी लॉन्च किया है अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स, उन लोग का अगेंस्ट में, तो ऑब्वियसली कुछ को तो ये पनिशमेंट तो मिलता ही है।
0: तो मैम, सरकार के जो इंटरवेंशंस और वेलफेयर स्कीम्स है, क्या वो स्टेट में चाइल्ड लेबर रोकने में इफेक्टिव है?
1: मेरा ख्याल से तो इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि चाइल्ड लाइन जो है हमारे अरुणाचल में 2012 से शुरू हुआ था चाइल्ड लाइन, तो तब से चाइल्ड लाइन जो काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर ये चाइल्ड विक्टिम्स जो है उन लोग को रेस्क्यू करने में, उनको जस्टिस दिलाने में, पर अभी तक टिल नाउ हम लोग को मोर देन 2000 to 3000 केसेस तो आ ही रहा है। तो फिलहाल हम लोग को अभी तक भी तो इतना सारा केसेस आ रहा है, पर मंथ हम लोग को लग के 14-15 केसेस तो आता ही है पर मंथ, थोड़ा फ्लक्चुएशन तो होता है नंबरिंग में, पर ऑन एन एवरेज हम लोग को लग के 14-15 केसेस आता है महीना में। तो इसका हिसाब से तो मुझे जो भी सरकार का स्कीम्स और वेलफेयर स्कीम्स है उससे तो कुछ फर्क तो नहीं हो रहा है, बिकॉज आई फील कि हमारे जो आदमी है, हमारे जो अरुणाचल वासी है, अभी तक भी अवेयर नहीं है कि अगर उन लोग चाइल्ड लेबर एंगेज करते हैं तो उनका आउटकम क्या होगा, उनका प्रोस एंड कॉन्स क्या होगा, उनका लाइक कि चाइल्ड लेबर एंगेज करने से उनका उनका ऊपर में क्या पनिशमेंट है, ये सब कुछ भी अभी तक अवेयर नहीं हमारे हमारे पीपल, हमारे जो अरुणाचल वासी हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल से हम लोग को और भी अवेयरनेस फैलाना है, और भी हम लोग को काम करना है ये चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे लाइक कि जो हम लोग को केसेस आता है, यहाँ पे पॉक्सो केसेस भी आते हैं, फिर चाइल्ड एब्यूज है जो फिजिकली एब्यूज होते हैं, हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं, फिर मिसिंग एंड फाउंड होते हैं जो बच्चे

0: अपना मालिक का घर से भी भाग जाते हैं क्योंकि उनको फिजिकली अब्यूज करते हैं, टॉर्चर करते हैं, इसलिए उन लोग भाग जाते हैं. उसके बाद में चाइल्ड लेबर केसेस तो है ही, वो सब फिर उनको फिजिकली अब्यूज नहीं करने से भी चाइल्ड लेबर एंगेज करना ही क्राइम है. इट इज अगेंस्ट द लॉ बिकॉज हम लोग चाइल्ड को, हम लोग उसका फ्रीडम को हम लोग डिप्राइव कर रहे हैं. तो इनको भी हम लोग ये कर रहे हैं. और चाइल्ड ट्रैफिकिंग है जो बच्चों को उनका बिना जानकारी से उनका घर से भी उनको उठा के यहाँ में हम हमारे अरुणाचल में लाते हैं और उसके बाद में कहीं कहीं घरों में उनको डोमेस्टिक हेल्प के लिए एंगेज करवाते हैं. उसके बाद में बहुत सारे ऐसा केसेस हैं जो पब्लिक को अभी भी मतलब हम लोग रोकना चाहिए.
1: मैम मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आपके हिसाब से खासकर अरुणाचल प्रदेश में समाज मिलकर कौन सा स्टेप्स ले सकता है चाइल्ड लेबर को कम या खत्म करने के लिए?
0: चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए मेरा ख्याल से पब्लिक को हम लोग अवेयरनेस देना है, द प्रोस एंड कॉन्स ना, जो चाइल्ड लेबर एंगेज करने से क्या होता है वो सब हम लोग अवेयरनेस करना है. एंड मेनली हम मैं तो मानती हूँ कि जो ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स को भी हम लोग पकड़ना है, जो ट्रैफिकर्स है, ब्रोकर्स है, उनको पकड़ना है क्योंकि उनका जरिए ही बच्चों को अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर स्टेट से हमारे यहाँ पे लाया जाता है. और हर घर में मतलब जिसको चाहिए, जो हम लोग यहाँ पे अरुणाचल का लैंग्वेज में भोंती भोंता बोलते हैं, तो जिसको भी चाहिए उन लोग सप्लाई करते हैं ये ब्रोकर्स एंड ट्रैफिकर्स. तो मेरा ख्याल से हम लोग जो है, जो भी ब्रोकर्स और ये ट्रैफिकर्स है उनको पकड़ना है, एक्चुअली उनको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन ब्रोकर है. तो इनको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकने से तब आई थिंक कि चाइल्ड लेबर को हम लोग रोक सकते हैं.
1: तो मैम ये जो ब्रोकर्स ट्रैफिकर्स लोग होते हैं ना, उनके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिया जाता है?
0: उनका अगेंस्ट में फिलहाल पहले हम लोग ने इन्फॉर्मेशन दिया था तेजू में, तो वहाँ पे तो उन लोग ब्रोकर्स को ये करके जेल में डाला है, उनको इम्प्रिजन किया था. बट देन द थिंग इज दैट बच्चों को भी और जो एम्प्लॉयर्स हैं उन लोग भी ब्रोकर्स और ट्रैफिकर्स का आइडेंटिटी को नहीं बताते हैं, तो इसके लिए हम लोग को प्रॉब्लम होता है कि ब्रोकर्स और ट्रैफिकर्स जो भी है उनको पकड़ने के लिए हमारे लिए मतलब थोड़ा मुश्किल होता है.
1: तो मैम ये जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए अरुणाचल में तो बहुत कॉमन है ना, डोमेस्टिक हेल्प में बच्चों को ऐसे काम कराना
0: जी,
1: तो इसको लेके आपका क्या व्यूज है?
0: मैं वही सोचती हूँ, लाइक की देखिए ना, एवरी वन इज ह्यूमन, हम लोग सब इंसान है. तो हर एक मैं इंसान को पूछती हूँ, हमारे अरुणाचल वालों को, कि आप लोग का भी बाल बच्चे हैं, तो हम लोग जो है अपना बाल बच्चों को किसी का घर में आप लोग रख सकते हैं कि नहीं, ऐसे डोमेस्टिक हेल्पर किसी का घर में आप कांचा कांची नहीं तो भोंटा भोंटी जो बोलते हैं वो रख सकते हैं क्या? नहीं ना. तो हम लोग जो है हमारे बच्चों को तो अच्छा स्कूल में दाखिल करवाते हैं, उनको अच्छा शिक्षा देते हैं, उनको लाइक कि जो भी लाइफ में जो एमिनिटीज है हम लोग उनको प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करते हैं अपने बच्चों को. तो फिर दूसरा का बच्चों को हम लोग फिर क्यों चाइल्ड लेबर में लगाना है ना? मेरा ये, मैं यही सोचती हूँ कि हम लोग भी दूसरा का बच्चों को भी, हमारे बच्चे जैसे हम लोग अगर देखते हैं तो हमको भी थोड़ा हेजिटेशन होगा कि हम इसको चाइल्ड लेबर में नहीं लगाएंगे. अगर लगाता भी है बाय लक बहुत ही जरूरत है, ऐसा होने से भी उसको मतलब एब्यूज मत कीजिए, उसको प्रॉपर एजुकेशन दीजिए ना, क्योंकि एजुकेशन मेन होता है. आप उसको उसका फ्रीडम, उसका चाइल्डहुड, एवरीथिंग आप उसको डिप्राइव करते हैं चाइल्ड लेबर एंगेज करके. हाँ. तो अब अगर अपना बच्चा को प्यार करते हैं तो दूसरा बच्चा को भी आप प्यार कीजिए. हाँ. ये तो इंसानियत है. हाँ. कि नहीं?
1: तो मैम ये जब हम किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है हमें दिखे तो हमें क्या करना होगा?
0: आप अगर आपका नेबरहुड में अभी अगर आप रास्ते में भी किसी को भी ना चाइल्ड, एनी चाइल्ड बिलो 18, आप any child, when you see a child in distress, just call. आप लोग call कीजिए 1098. It is just back counting 10 9 8. 1098 में call कीजिए. ये number toll free है. और जब आप लोग हमको information देते हैं, आपका identity हम लोग कभी reveal नहीं करते हैं. आपका identity हमेशा confidential रहते हैं. तो जब भी आप लोग किसी child को atrocity हो रहा है, like

0: कि किसी को एब्यूज हो रहा है, किसी कोई लड़की को लाइक मोलेस्टेशन हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो इसमें आप लोग काइंडली हमारे 1098 नंबर में आप लोग डायल करके हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए।
1: ओके मैम, तो जैसे हमने सुना, अगर आप किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा हो, आपको दिखे या आपका बच्चा किसी परेशानी में हो, तो आप 1098 पर कॉल कर सकते हैं। तो मैम, क्योंकि आप चाइल्ड हेल्पलाइन में काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में ये सिचुएशन बेहतर हो सकती है?
0: ऑब्वियसली मैं तो क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स है, फिर CWC है जो चिल्ड्रेन को मदद करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, और फिर हर डिस्ट्रिक्ट्स में लाइक की चाइल्ड हेल्पलाइन तो है ही अभी। इसलिए मेरा ख्याल से अभी लाइक की धीरे धीरे जब पब्लिक को अवेयरनेस आ जाएंगे, और उसके बाद में उनको जब जो पनिशमेंट वगैरह जो भी लाइबिलिटीज उन लोग को बिफॉल होगा, लकी इफ दे एंगेज चिल्ड्रेन, तो अगर ये सब उन लोग को जानकारी हो जाएगा, तब मेरा ख्याल से चाइल्ड लेबर एबॉलिश हो जाएगा। और हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल से तो आई एम पॉजिटिव कि धीरे धीरे हमारे आदमी अवेयर हो जाएगा कि चाइल्ड लेबर को हम लोग चाइल्ड लेबर हम लोग एंगेज नहीं करना है।
1: बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो आखिर में मैम, इस मुद्दे पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं यही ये करती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ कि लेट मी से इन इंग्लिश, ओके? चाइल्ड लेबर स्टील्स चाइल्डहुड एजुकेशन एंड ड्रीम्स। एवरी चाइल्ड डिजर्व्स द राइट टू लर्न, प्ले एंड ग्रो इन अ सेफ एनवायरमेंट। लेट अस ज्वाइन हैंड्स to stop child labor and ensure a bright future for every child on this day, on this International Child Labor Day. मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग सब मिलके चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करने के लिए जितना भी हो सके हम लोग थोड़ा एम्पैथी दिखाए बच्चों को, थोड़ा हम लोग कम्पैशनेट हो जाए, थोड़ा काइंडनेस हम लोग दिखाए बच्चों को, कि उन लोग भी अपना चाइल्डहुड जो होते हैं अपना ड्रीम्स को फुलफिल करें, उन लोग भी फ्रीली यहाँ वहाँ खेल कूद करें, खेले कूदे, और उसके बाद में उन लोग एक ऐसा एनवायरमेंट में ग्रो अप करे जहाँ पे उन लोग अपना ओन डिसीजंस ले सके और अपना ड्रीम्स जो अपना सपना है उनको भी फुलफिल कर सके।
1: धन्यवाद मैम, आपने अपना समय निकाल कर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की। आज की बातचीत से एक तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमें ये समझ आता है कि चाइल्ड लेबर एक गंभीर समस्या है जिसे खत्म करने के लिए हमें सबको मिलकर कदम उठाना होगा। हर बच्चे का अधिकार है एक सुरक्षित बचपन और शिक्षा। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ी थी एलिजाबेथ तांजांग मैम, एडमिनिस्ट्रेटर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 WCD कंट्रोल रूम। इसी के साथ मैं निदो यांगा आपसे इजाजत लेती हूँ। आप सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM 103.1 MHz। धन्यवाद।
2: सुन रहे थे आप ये विशेष अंक साक्षात्कार ऑन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। उम्मीद करते हैं कि इस अंक से आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 MHz। दिल से दिल की बात।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: तो दोस्तों, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड फिल्म के इसी गीत के साथ ही हम आप सभी को छोड़े जा रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। समाचार के बाद हम फिर यही मिलेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार।
1: आकाशवाणी ईटानगर है तन्ना के डिंगम कुमरिक सिरोल से यूं के गोलुक अधि पे बोन ताबा लेंदुं कराया पे अधि लुता दागो में तत्पाय लुबिना से बालों मुआं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विसीलो एंटरप्रेनरशिप एजुकेशन हेल्थ केयर सैनिटेशन हाउसिंग स्पोर्ट साइंस दे लोग के गवर्नेंस लोग के फाइनेंशियल इनकल्सन लगांगे में लुकान बोटो लुटो ने Lutonam atokidi solok sektor stakam lo mime kidi nga airu pe imin gedungam lukandol modi bi social media lo atkando ne India government ne 12 years ko gobandu solo mime kidi nga me paksimang women lead development am airu pe government ne kabi ibidu delo idan la self help group am government ne ediru pe torgur dale bomdung mime kidi nga me independent financial kasidopem na lukan botung.

सुन रहे थे आप आदि श्रोताओं का समाचार। आगे इस कार्यक्रम को पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर

एवं अरुण एफएम के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से कुछ ही पलों में प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना, बस इतनी ही तो बात है। खैर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आज के कलाकार में, जिसे आप सुन रहे हैं हमारे संग आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना।

दोस्तों बिल्कुल आप बने हुए हैं हमारे संग आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। और अब तक तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हमारे आज के कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल की आवाज में वो खनक और वो ठहराव है जो सीधे रूह में उतर जाता है। टी सीरीज के उस सुनहरे दौर से लेकर बड़ी बड़ी फिल्मों के ब्लॉकबस्टर गानों तक उन्होंने संगीत की दुनिया को वो नायाब तोहफे दिए हैं जो आज भी उतने ही नए लगते हैं। तो दोस्तों कार्यक्रम आज के कलाकार के इस अंक में हम पेश करेंगे अनुराधा पौडवाल के कुछ गाए हुए नगमे और साथ ही बातें भी करेंगे अनुराधा पौडवाल की। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं अगले गीत की ओर।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, फिल्म तुम बिन से। तो दोस्तों, आज बात हो रही है अनुराधा पौडवाल की इस अंक में, यानी कि कार्यक्रम आज के कलाकार में। अनुराधा पौडवाल को फिल्म आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और बेटा के लिए 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। उन्हें अगला लता मंगेशकर भी कहा जाने लगा था। एक बार ओपी नैयर ने कहा था कि लता अब खत्म, अनुराधा ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। अनुराधा लता मंगेशकर की बहुत बड़ी फैन है, यहां तक कि वो अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस भी लता जी को सुनते हुए ही करती थी। उनकी पहली सोलो सिंगिंग मूवी हेमा मालिनी और शशि कपूर की आप बीती थी। अनुराधा इंडियन म्यूजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करती है। हालांकि उन्होंने कभी भी क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी। अनुराधा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने क्लासिकल सिंगिंग की बहुत कोशिश की लेकिन उनसे नहीं हो पाया।

अनुराधा जब अपने करियर के पीक पर थी तो उन्होंने घोषणा कर दी कि वे अब सिर्फ गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज के लिए ही गाएंगी। इसका सीधा फायदा अलका याग्निक और दूसरी सिंगर्स को मिला। फिल्म को छोड़ भक्ति गीत गाना शुरू करने के बाद उनका करियर ढलान पर आने लगा।

अनुराधा पौडवाल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, 2 ओडिशा राज्य फिल्म पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री शामिल है।

0: कार्यक्रम आज के कलाकार में बस इतना ही। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार।
1: आकाशवाणी इटानर पोकुमा हिलपोलग अलो लूर लूनी नरन्या उरुंग कनबाजे रेम तानमेलम अलमेल सुरुंग निशी अगम आर मोलंजी रेम तानग दत्ता चोब सुरुंग छिपयम तापा चोरे जबजरशी धर्म आखोम हर पुबाबला एदुकेशन ला हेल्थ केयर सैनिटेशन नुसुनाम मोगकोक पोल लॉ स्पोर्ट्स साइंस ओक होमे निमगतिने अलवसिलन गलन मोदो कोब मुरली मुरको हम यापोयाक्ता ला यागले कजिग्रिक ला कोरपाम ग पोल लॉ रिग मोग कुनाम हम मोग ग गदा मुरले लो अलव हेंज कजि ग दुकुनाम हम ला शिलो फ्रॉम स्टैंडर्ड नरेंद्र मोदी या जापा जिप कुम हम मेन पातो ओक होमे निमे गुदह रिगो मेंगो हम ड्रोन टेक्नोलॉजी मेनाम लो अलब रिग पाग कुम मोग ग कुसु कोरा गदा मुल लो रिगो मेंगो हम नितने नाम ते लो रिलेन तागलन गला मोदबला।

के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: और श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे आशिकी में हर आशिक साधना सरगम की आवाज में फिल्म दिल का क्या कसूर से। जी हाँ, वीकेंड स्पेशल मैगजीन प्रोग्राम के बाद आप सुन रहे थे हिंदी फिल्मी नगमे, और अब वक्त हो चला है हिंदी फिल्मी फरमाइशी गीतों पर आधारित यानी फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, अब से कुछ ही पलों में।
1: हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
2: हेलो नमस्ते, मैं आसाम से बोल रहा हूँ, हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट से। मेरा गांव का नाम है लाला बाजार। आज पहली बार मैंने कॉल पाया हूँ।
1: अच्छा, आप पहली बार आकाशवाणी ईटानगर में कॉल कर रहे हैं। जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: ईटानगर तो हम लोग सुनते भी है।
1: अच्छा अच्छा,
2: मीडियम में तो हेलो फरमाइश 8 बजे देता है ना।
1: हाँ जी हाँ जी, सही कहा।
2: मैं सुनता हूँ और आज नंबर लेके फोन कुछ दिन से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन
1: अच्छा
2: नहीं मिल रहा है।
1: जी जी जी, काफी लोग कॉल करते हैं ना, इसीलिए लाइन बिजी रहता है। जी,
2: हमारे आसाम से तो बहुत लोग करते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत लोग सुनते हैं आकाशवाणी ईटानगर हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो आपका नाम जान सकता हूँ मैं?
2: मेरा नाम है रांतो पुरुकास्तो।
1: रांतो पुरकास्टो, ओके। और आप क्या क्या प्रोग्राम सुनते हैं रांतो जी? हेलो फरमाइश से
2: तो हिंदी गान का प्रोग्राम ज्यादा सुनते हैं।
1: अच्छा अच्छा, गाना आपको बहुत ही पसंद है।
2: गाना बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी,
2: गाना सुनाई देता है।
1: हाँ जी हाँ जी,
2: कुमार सानू जी, उदित नारायण जी का कभी गाना सुनता हूँ।
1: ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, आपके फेवरेट सिंगर है कुमार सानू, उदित नारायण?
2: कुमार सानू, उदित नारायण, अरिजीत सिंह।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी,
2: अरमान मल्लिक।
1: ओके,
2: कुछ दिन से ट्राई कर रहा हूँ, ईटानगर से बात करूंगा, ईटानगर से बात करूंगा। लगा आज तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया।
1: जी, आपका पहला कॉल है, फर्स्ट कॉल,
2: फर्स्ट कॉल।
1: हाँ जी हाँ जी, तो रांतो जी, आप सिर्फ हिंदी गाना सुनते हैं या फिर?
2: मुझे फोन नंबर दिया है देवजीत।
1: अच्छा अच्छा, देवजीत दान ने दिया आपको? ओके, बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे से आप हमें कॉल करते रहेगा?
2: हम लोग कॉल करेंगे।
1: ओके,
2: बंगाली आता है आपको?
1: हाँ जी, थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ मैं, समझने में समझता हूँ जी।
2: अच्छा ठीक है, हमारे माने नमस्कार रोइलो अपना रास्ता से।
1: ओके ओके, आमी नमस्कार करछी आपनाके।
2: अच्छा, आज के गान सुनबो।
1: हाँ हाँ, छबिर नाम
2: सुनना है, दिल है तुम्हारा।
1: दिल है तुम्हारा फिल्म का गाना?
2: दिल है तुम्हारा फिल्म का गाना है। मस्ताना मौसम है।
1: ओके जी जी जी, ओके। मस्ताना मौसम, मौसम कैसा है आपके वहाँ पे?
2: हमारे यहाँ तो आज धूप खिल रहा है।
1: अच्छा, धूप खिला हुआ है। अच्छा अच्छा, तब तो मस्ताना ही है
2: मौसम, बहुत सुहाना है।
1: ओके ओके ओके,
2: और ज्यादा गर्मियों में नहीं है। हाइलाकांदी में आए थे कभी?
1: नहीं, कभी जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा कभी।
2: अच्छा, कभी मौका मिले तो हाइलाकांदी में घूमिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और रांतो जी, इस गीत को आप किन लोगों को सुनाना चाहते हैं?
2: ये गाना तो हम देवजीत भाई को विशेष कर सुनाना चाहते हैं।
1: ओके,
2: और ईटानगर केंद्र में तो हम फास्ट फोन किया, जो लोग ईटानगर सुनते हैं सभी कॉलर को हम ये गान डेलीगेट करते हैं।
1: ओके ओके ओके जी, तो रांतो जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
2: ये गाना सुनना?
1: हाँ जी, मैं भी जरूर सुनूंगा आपके साथ।
2: ठीक है,
1: ओके ओके।

0: हेलो फरमाइश ईटानगर
1: सर नमस्कार
0: जी नमस्कार हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी धन्यवाद सर
0: जी
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से
0: टेकचंद अग्रवाल
1: जी सर
0: ओके आप पहली बार कॉल कर रहे हैं हमें
1: नहीं सर मैं आज से 4-6 महीने पहले किया था 6 महीने हो गए मेरे को लग रहा है
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी
1: ये मेरी दूसरी या तीसरी बार बात हो रही है
0: ओके जी आपने दूसरे श्रोताओं को मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी
0: हाँ जी
1: क्या है बीच में सर कुछ गैप हो गया था
0: अच्छा अच्छा अच्छा और कहीं बिजी थे आप
1: नहीं सर बिजी नहीं थे कार्यक्रम तो सुनते रहते हैं लेकिन होता यह है कि कई बार सर लगाव तो लगता नहीं है कई बार सर थोड़ा हमें गैप भी देना पड़ता है
0: ओके सही बात जी आजकल लोग ज्यादा कॉल करते हैं ना तो लाइन ज्यादा ही बिजी रहता है।

0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: चलिए आज तो आपका कॉल लग गया, तो इसी खुशी में कहिए कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए।
0: सर मुझे सुनवा दीजिएगा, तेरे घर के सामने का 1963 की फिल्म थी, देखो रूठा ना करो।
1: ओहो वाह वाह वाह, कोई रूठा हुआ है क्या सेकचंद जी?
0: नहीं नहीं सर, बस
1: गाने अच्छा लगता
0: गाने
1: है।
0: सर दिल को सुकून
1: देते रहेंगे। ओके जी जी, जरूर सुनाएंगे।
0: और अपनी बात कहने का कुछ मौका भी मिल जाता है।
1: हाँ सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, समझने वालों को इशारा काफी होती है।
0: बिल्कुल
1: जी, और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे थेकचंद जी इस गीत
0: सर?
1: को?
0: हमारे मित्र, सबसे पहले आप सुनिए सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी जी।
0: और उसके बाद हमारे मित्र है लोकेंद्र वर्मा जी, और विजय पांडे जी है, शारदा प्रसाद प्रजापति जी है, और गौतम रायबोली जी है। इन सभी मित्रों के साथ में सुनवा दीजिए सर, क्योंकि एकता रेडियो श्रोता जो हमारी जो कैनसी ग्रुप है
1: जी, उसमें तो काफी श्रोता है।
0: बेटी
1: जी जी जी, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: जी जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: सर, हम दिमाजी असम जिला में सकी सकुरी से बिमल बसुमतारी बोल रहे हो सर।
0: जी बिमल बसुमतारी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए कैसे हो आप?
1: जी सर, हम ठीक है। अभी खेत में गया था, खेत से हल मार के अभी आया घर में सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सुबह सुबह जाते हैं आप?
1: जी सर।
0: ओके, दिन को तो गर्मी होती है ना?
1: जी सर।
0: ओके ओके, जी जी जी।
1: अभी फिर खाना पीना खा के फिर दुकान में जाएगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, डबल काम, डबल ड्यूटी।
1: जी सर, अकेला आदमी है ना, करना पड़ेगा ना सर।
0: ओके जी जी जी, हाँ लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। हाँ जी
1: जी सर, करना
0: जी
1: पड़ेगा।
0: जी जी जी, ओके ओके। तो दुकान में बैठ के कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: गाना तो हम आज सुनना है सर, हमको दंगी पर का दिल दीवाना नजर की हो गया ये गाना।
0: ओके जी
1: जी सर, ये गाना हम दोस्त के लिए डिलीट करना चाहते हैं।
0: जी जी जरूर जरूर ना।
1: हम लोग का उमल बसुंदर है, फैकन मुंडा है, अंजलि बसुमतर है, सुनीता बसुंदर, रमेश शास्त्र, सुखबिला मिश्रा, रमेश प्रजापति, अंशुला बसुंदर, पूरम वर्मा, अविनाश, दुर्गेश नगनपुरी, हितेंद्र दास, जोगिंदर रंपी, गोल्डी, अविनाश, शिकारी रंपी, भगवान सिंह, राकेश और आपको भी सर, सबके लिए डिलीट करना चाहते हैं सर।
0: ओके, सभी को आप सुनाना चाहते हैं। तो विमल जी, इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी सर।

0: हेलो, फरमाइश।
1: परम माननीय महोदय, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी आकाशवाणी ईटानगर परिवार की ओर से।
1: जी, हृदय से धन्यवाद। मानवर मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र
0: शारदा प्रसाद जी,
1: श्री राम से आदरणीय वाग्रा साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ। बड़ा सौभाग्य है कि मुझे एक बार पुनः आप वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ।
0: जी,
1: मैं तो बहुत ही गद और सुखद अनुभूत करता हूँ।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, तहे दिल से धन्यवाद। आप हमसे जुड़ते हैं और अच्छे अच्छे गीत अपने मित्रों और हमें भी सुनाते हैं।
1: जी, ये तो आकाशवाणी का ही एक लक्ष्य है, सूचना शिक्षा मनोरंजन। यदि इसमें मनोरंजन नहीं होगा, सूचना नहीं होगा, तो फिर आनंद कहाँ आएगा।
0: बिल्कुल,
1: अच्छे अच्छे गीतों की अच्छी अच्छी वार्तालाप जब होती है तभी तो कार्यक्रम अच्छा बनता है, और एक आकर्षक प्रोग्राम जब होता है तो श्रोता भी इसमें आकर्षित होते हैं।
0: जी जी जी, श्रोता भी जुड़ते हैं हमसे ज्यादा से ज्यादा जी, और उनसे उनके बारे में जान करके हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है,
1: जी,
0: अपने
1: जी,
0: बारे में और अपने
1: और
0: जगह
1: ये
0: के बारे में।
1: मोबाइल एप्लीकेशन जब से आ गया है न्यूज ऑन AIR, तब से तो हमारे हाथ में एक जादू का पिटारा लग गया है।
0: जी
1: बस
0: जी
1: हम
0: जी,
1: जो चाहे, जहाँ चाहे, जिससे चाहे उससे वार्तालाप कर लेते हैं और वहाँ के प्रोग्राम भी सुन लेते हैं।
0: जी जी जी, जादू के पिटारे के जरिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, कहिए आज इस जादू के पिटारे से कौन सा गीत आपको सुनाए।
1: मानवर, आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है बॉर्डर, रूप कुमार राठौर ने इस गीत को गाया है।
0: जी,
1: ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो, ये प्यारा सा गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी ईटानगर से।
0: जी जरूर सुनाएंगे, और ये गीत हमें बॉर्डर की याद दिलाती है, जहाँ पे हमारे वीर सैनिक हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, यदि वो सीमा पे इतने अच्छे प्रहरी नहीं हो और दुश्मनों से हमारी रक्षा न करते रहो तो हम चैन की नींद नहीं सो सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम चैन की नींद सोते हैं, आराम से रहते हैं और आनंद अनुभूत करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने जीवन को। ये सब हमारे जो वीर जवान है, सैनिक है, उनकी बदौलत हम सुख चैन से रहते हैं।
0: बिल्कुल सही
1: उन्हें
0: कहा,
1: हम सत सत नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं।
0: जी जी, हमारी ओर से भी सत सत नमन सैल्यूट उन सभी वीर सैनिकों को। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को।

0: और सर्वप्रथम मैं अपने परम मित्र वाघरा साहब को ये समर्पित करता हूँ।
1: तहे दिल से धन्यवाद जी।
0: और याद करना चाहता हूँ अविनाश जी, आशुतोष जी, लोकेंद्र वर्मा जी को, साथ में राजू यादव है, पुरुषोत्तम है, पुष्कर नाथ जी हैं, पूरन वर्मा जी, राकेश कुमार जी हैं, इन सभी दोस्तों के साथ साथ में हमारे मित्र है टेक चंद अग्रवाल, सतीश रघुवंशी, इन्हें भी ये गीत सादर समर्पित करता हूँ। और ईटानगर से जो जुड़ते हैं, जो स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं और इस कार्यक्रम को सुनते हैं, उन सभी श्रोताओं को भी ये प्यारा सा खूबसूरत गीत सादर समर्पित करता हूं।
1: सभी को समर्पित करना चाहते हैं। जी जी जी, तो शारदा प्रसाद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना बॉर्डर फिल्म से।
0: जी, धन्यवाद। नमस्कार।

0: और रमेश प्रजापति, टुकाराम जाधव, लकेंद्र वर्मा, पुरुषोत्तम कुमार और प्रेमजीत चक्रवर्ती, अनुप कुमार जी और हमारे सभी आकाशवाणी हेलो फरमाइश सुनने वाले दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ।
1: सितारे जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं, कल की आवाज फिल्म से। ओके।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं गुजरात से आपका अनियमित श्रोता धीरज जबारी, क्योंकि कई बार सुनता हूँ कई बार नहीं सुनता।
0: क्या बात है, लेकिन आप हमें याद करते हैं बीच बीच में, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपको।
1: जी जी सर
0: जी। और धीरज जी कहिए, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं सर, और मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, यानी
0: अच्छा
1: बादल छाए हैं तो थोड़ा बहुत गर्मी से थोड़ी राहत मिली।
0: ओके, अभी तो सिर्फ बादल ही छाया हुआ है, बारिश तो हुई नहीं?
1: नहीं हुई सर।
0: ओके, होने की आशंका है?
1: आशंका है, लेकिन कई बार जो
0: धोखा दे जाता है ना,
1: होते हैं वो बारिश नहीं लाते,
0: जी
1: धोखा जाता है।
0: धोखा दे जाता है बादल। चलिए हम यही दुआ करते हैं इस बार धोखा ना दे। जी
1: जी जी। और हम अभी यहाँ बारिश में अभी मेरे ख्याल से थोड़ा हमें सब्र करना पड़ेगा।
0: ओके,
1: क्योंकि 15 जून के बाद यानी किसान भाई बारिश चाहते हैं,
0: अच्छा
1: तो हो सकता है थोड़ा लेट हो सके।
0: ओके ओके ओके, चलिए आशा करते हैं जल्दी ही बारिश हो ताकि हमारे किसान भाइयों को लाभ पहुंचे इससे।
1: बिल्कुल सर।
0: जी जी जी। तो धीरज जी, आज कहिए कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: सर आज हमें सुनना है कुर्बानी फिल्म का गाना सुनना है, नाजी हसन के आवाज में, आप जैसा कोई नहीं। और सर हमारा आकाशवाणी फोन इन एकता ग्रुप में ग्रुप है, तो इसमें सर 100 के ऊपर सदस्य गण है।
0: ओके,
1: और आपको ईटानगर को हम समय अनुसार याद करते हैं सभी लोग।
0: जी जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना कुर्बानी फिल्म से।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, बहुत दिनों के बाद फोन मैंने लगाया।
0: जी नमस्कार, चलिए आपने बहुत दिन ही सही हमें याद तो किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी, आप तो तारीफ के काबिल भी हैं।
0: क्या बात?
1: मैंने पहले भी तारीफ किया था, वाकई अनाउंसर आप हैं, इसमें कोई शक नहीं, आवाज की धनी है आप। मैं शेख जफर हसन क्वाड जिला रोहतास बिहार से बोल रहा हूँ सर।
0: जी शेख हुसैन जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी तारीफ की, इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया।
1: ना आवाज देखिए, आवाज जो होनी चाहिए
0: जी,
1: जो छठ के आ रही है बहुत हिंदुस्तान प्राइवेट चैनल सरकारी चैनल दोनों में लगाता हूँ।
0: ओके जी।
1: और जी इससे पहले बहुत कॉल लगा चुका हूँ।
0: अच्छा जी जी।
1: तो आपकी आवाज जो आ रही है बहुत अच्छी आ रही है, और बोलने का अंदाज भी सर बहुत अच्छा आपका है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, दिल खुश हो गया, दिल खुश कर दिया आपने आज तो मेरी।
1: तो सर भूल रहे, नाम अपना बता दीजिए।
0: जी मेरा नाम बोके बागरा है।
1: बागरा, बोके बागरा जी सर।
0: जी
1: तो आप तो लगभग 5-6 साल से आपको हम सुनते चले आ रहे हैं।
0: ओके क्या बात है। जी जी जी जी, जानकर बहुत ही अच्छा लगा। और शेख जी अपने शौक के बारे में बताइए, आप क्या क्या पसंद करते हैं?
1: शौक से पसंद में जैसे क्रिकेट पसंद करता हूँ।
0: अच्छा जी।
1: फुटबॉल पसंद करता हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है जी।
1: और उसके बाद में जो है गाना जैसे मैं गा लेता हूँ उसको पसंद करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ओके।
1: जी जी। और शतरंज खेलता हूँ।
0: अच्छा,
1: पसंद करता हूँ।
0: जी जी जी जी जी, वाह वाह क्या बात है
1: जी।
0: जी तो आज आपकी जो फरमाइश होगी वो गाकर ही होगी, गुनगुनाएंगे।
1: जैसे है कि आपका
0: जी
1: फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार, मोहम्मद रफी ने गाया है, शेख सुनाऊंगा आपको।
0: जी जी जी जी जी जी।
1: देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, शेर भी जो है आपको सुनाकर खुश कर देता हूँ।
0: अच्छा जी जी, हो जाए हो जाए, इरशाद इरशाद।
1: एक कतरा ही सही आंखों में पानी को रहे, अरे मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे। और दूसरा से आखिरी से, जब आपकी याद आती है तो आंख में आंसू आ जाते हैं, मगर क्या करें आपकी तस्वीर देखकर मुस्कुरा लेते हैं।
0: क्या बात है क्या बात, बहुत खूब शेख साहब, बहुत ही बढ़िया लगा। जी जी जी ओके।
1: कॉल सोमवार को भी लगा रहे थे, कट गया, कोशिश किया नहीं लग पाया।
0: ओके जी जी जी जी
1: जी।
0: और इस गीत को किन लोगों के साथ आप सुनना चाहेंगे?
1: तो हमारे लोग भी तो पूरे हिंदुस्तान में लोग भी धूम मचाए हुए हैं, जैसे
0: जी
1: भदरवा जम्मू कश्मीर के पुरुषोत्तम कुमार, अनवर बिहारी और गणेश दास बंगाली।
0: ओके।
1: और गाना सुन लीजिए जो पसंद किया है सर।
0: जी जी जी जरूर जरूर।
1: दो लाइन।
0: अच्छा अच्छा, हाँ जी सुनाइए। जी जी
1: सर,
0: बिल्कुल बिल्कुल जी
1: लगा है।
0: और जी जी जी बिल्कुल।
1: देखा है तेरी आँखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार।
0: क्या बात है क्या बात है, आवाज की दुनिया के बादशाह मोहम्मद रफी जी की वही चुलबुली आवाज, चुलबुली अंदाज आपके आवाज में। जी बहुत ही अच्छा लगा जी शेख जी आपसे बात करके।
1: जी बहुत दिनों पर कॉल लगी है सर।
0: जी जी ओके।
1: दिल से कदर करते हैं, इज्जत करते हैं कि एक अनाउंसर आपके ईटानगर में आए।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: सर जी आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: तो मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ सर।
0: जी जगदीश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा है आपके वहाँ का मौसम अभी जगदीश जी?
1: सर जी मौसम तो आजकल भीषण गर्मी पड़ रही है पंजाब में।
0: ओके।
1: और घर से निकलना बड़ा दूभर हो गया है। सुबह शाम कोई काम है तो वो कर लेते हैं, नहीं तो घर में ही सारा दिन गुजारना पड़ता है।
0: ओके जगदीश सिंह, लेकिन अभी तो देश के कई हिस्सों में बारिश होनी शुरू हो गई है, आपके वहाँ कब तक आने का जा
1: कह रहे हैं? तो एक दो दिन में आएगी, पर अभी तो कहीं बादल दिखाई नहीं दे रहे।
0: बादल ही दिखाई नहीं दे रहा। ओके ओके, तब तो बहुत ही मुसीबत है जी।
1: उसकी मर्जी से ही सब कुछ होता है जी।
0: बिल्कुल सही कहा, ऊपर वाले की मर्जी, वो जब चाहे बारिश दे जब चाहे धूप दे।
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: तो चलिए घर बैठे रहिए और हमसे बातें कीजिए और सुनिए आपका पसंदीदा गाना कौन सा फिल्म का हो जाए आज?
1: सर आज फिल्म है शहनाई में रफी साहब जी की आवाज में बड़ा ही प्यारा सा गीत है, रोमानी गीत है।
0: ओके जी।
1: तो उसके बोल मैं दो लाइनें।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी।
1: न झटक जुल्फ से पानी

0: ना झटको जुल्फ से पानी, क्या बात है जगदीश जी। ऐसे ऐसे गाने आप लोग चुन के लाते हैं जिन्हें हमने कभी सुना ही नहीं, और हेलो फरमाइश में सुनकर और भी बहुत ही अच्छा लगता।
1: इतने प्यारे गीत हैं
0: जी
1: ये तो हमारे ये खून में रच बस गए हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है जी।
1: और
0: जी जी
1: इनका जो अगर याद भी कर लें तो अभी इन गीतों का आनंद आने लगता।
0: ओके, क्या बात है, क्या बात है। चलिए जरूर सुनेंगे आपके साथ इस गीत को। और किन लोगों को साथ आप सुनाना चाहते हैं आप?
1: मेरे मित्र हैं जी, गौतम राय बोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन से हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, जोगेश जांगड़े जी हैं, सुनील झा जी हैं, उदय लाल टेलर जी उदयपुर से हैं, और सतीश मिगलानी जी मलोट पंजाब से हैं, गंगा सिंह रावत जी नैनीताल उत्तराखंड।
0: ओके, इन सभी के साथ सुनना चाहते हैं आप इस गीत को?
1: जी सर जी।
0: तो जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना शहनाई फिल्म से।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी। भैया योगेश जांगड़े पे मैं सारा छत्तीसगढ़ से बोल रहा
0: जी। योगेश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है भैया। अच्छा
0: ओके तो कहिए कैसा है मौसम आपके वहाँ?
1: पहले जैसा ही है भैया, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।
0: अच्छा बदलाव हुआ नहीं अभी तक जी। हमारे यहाँ तो लगातार बारिश ही बारिश हो रही है
1: जी।
0: जी तो चलिए कहिए आपका पसंदीदा गाना कौन सा फिल्म का आज सुनाया जाए?
1: फिल्म है दिल तो पागल है।
0: दिल तो पागल है ओके।
1: गीत के बोल है कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना।
0: अब तो कुछ है बोलना। वाह वाह वाह। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: हेलो फरमाइश एकता ग्रुप का तमाम
0: गुरु के सभी साथियों को आप सुनाना चाहते हैं
1: जी।
0: तो योगेश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

सुन रहे थे आप हिंदी फिल्मी फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यानी फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। यह आकाशवाणी ईटानगर कारुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

प्रस्तुत है अब एक विशेष सूचना, ITI एडमिशन नोटिस। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग, ताबारिजो, देरांग, बालिनोंग, यूपिया, मानीपोलियांग जीरो, वीमेन ITI सागली,

9086800004 या फिर 9548223780। एक बार फिर नंबर है 9098688004 या फिर 9548223780। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ITI संस्थान से भी आप संपर्क कर सकते हैं।

0: तो श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे चंद हिंदी फिल्मी नगमे फिल्म देसी बॉय से। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के अवसर पर आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, आज का दिन पूरे विश्व में बाल श्रम के विरुद्ध मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और इसी मौके पर हम लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपके रेडियो साथी गई रहता। और श्रोताओं, आज बाल श्रम और बच्चों के अधिकार जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एडवोकेट बुलो यारी जी को, जो मेंबर है CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ईटानगर कैपिटल रीजन से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: थैंक यू, धन्यवाद आपको भी।
1: चलिए, सबसे पहले हम चाइल्ड लेबर को समझना चाहते हैं। चाइल्ड लेबर के अंदर जैसे हम लोग जो गैराज पे काम करते हैं, घर में बच्चे काम करते हैं, वही चाइल्ड लेबर है, या फिर जिस जो छोटे बच्चे हैं जो काम भी कर रहे हैं लेकिन इसको स्कूल भी भेज रहे हैं, वो भी चाइल्ड लेबर के अंदर आते हैं?
2: हाँ, तो अच्छा, ये चाइल्ड लेबर जो वही है कि बिलो 14 ईयर्स में जो काम करा रहे हैं, तो वो जो कॉमनली हम लोग बोला जाता है कि बिलो 14 ईयर्स में अगर आप कोई बच्चा को अगर काम कर रहे हैं तो वो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा। तो जैसे आपने अभी पूछा कि कोई गैरेज में होता है, कोई तो स्कूल जा रहा होता है।
1: हाँ,
2: तो जैसे गैरेज में हो गया वो तो प्योरली चाइल्ड लेबर हो गया
1: जी,
2: बिलो 14 ईयर्स पर्टिकुलरली। और जैसे स्कूल जा रहा है,
1: हाँ,
2: तो स्कूल जा रहा है तो स्कूल में अगर उसको रेगुलरली वो अटेंड कर रहा है और उसका मेंटल फिजिकल हेल्थ में अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उसका एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो ऐसे होने से उसमें चाइल्ड लेबर में तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि स्पेशली हम लोग उसमें वो देखते हैं कि बच्चा को चाइल्ड लेबर, हम लोग का लॉ में भी वही बोलता है कि बच्चा के एजुकेशन में हैम्पर नहीं होने, उसका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और एजुकेशन, अगर काम अगर वो डोमेस्टिक हेल्पर का तरह से होने से भी इन बिटवीन उसका हॉलीडेज में,
1: हाँ,
2: वेकेशन में अगर वो हेल्प करता है
1: तो
2: वो चाइल्ड लेबर में काउंट नहीं किया जाएगा।
1: हाँ, जो स्कूल भी नहीं जा रहा है और जिसको थोड़ा मेंटली फिजिकली भी जिसको सही से नहीं रख के सिर्फ और सिर्फ काम में लगा रहा है बिलो 14 ईयर्स के बच्चों,
2: हाँ,
1: वो चाइल्ड लेबर में,
2: चाइल्ड लेबर में काउंट किया जाएगा। और ऐसे हम CWC मेंबर मतलब कम में क्रॉस हम लोग कुछ कुछ केसेस में मैंने देखा है कि जैसे कि किसी किसी को हाँ स्कूल में एडमिशन तो कर दिया,
1: हाँ हाँ,
2: लेकिन स्कूल जाने नहीं दे रहे
1: ना,
2: नेम सेक में रखा हुआ है, स्कूल एब्सेंट होने देते, एक दो दिन जाएगा जाने नहीं देते, फिर घर का ही काम में उसको डोमेस्टिक हेल्पर में बिजी रखते हैं, तो वो चाइल्ड लेबर में काउंट किया जाएगा।
1: क्योंकि अभी ऐसे भी बहुत सारे लोग है कि घर में अपने ही यहाँ के अरुणाचल के कुछ बच्चों को हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लेके रखते हैं, फिर उनको स्कूल एडमिशन करके स्कूल भी जाने देते हैं, साथ ही साथ घर का काम भी करने देते हैं। और यही वजह है कि मैंने इसको क्लियर करना चाहा कि वे भी चाइल्ड लेबर के अंदर आते हैं, या फिर उन लोग को हम लोग चाइल्ड लेबर में काउंट नहीं करेगा। तो चाइल्ड लेबर में 14 ईयर्स से ज्यादा होने से वो तो काउंट नहीं करेगा, या फिर 18 ईयर्स
2: चाइल्ड लेबर स्पेशली जो हम लोग का जो लॉ बोलता है कि चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स, तो अबव 14 ईयर्स होने से उसमें भी कुछ कुछ मतलब कंडीशन है। अच्छा। जैसे कि आप इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री वगैरह, माइनिंग फैक्ट्री हो गया ना, कुछ डेंजरस अगर एडल्ट के लिए अगर हानिकारक है वो जगह में आप काम नहीं करा सकते
1: 15-16 ईयर्स
2: में, हाँ, बच्चों को, और उसको नाइट शिफ्ट वगैरह भी आप नहीं करा सकते हैं ना, ये कुछ कुछ कंडीशन है मैंने ऐसे है।
1: ओके, नॉर्मली 14 इयर्स तक के जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर में आते हैं, 14-18 में कुछ कुछ कंडीशंस के साथ,
2: हाँ, कंडीशन के साथ आप उसको करा सकते हैं।
1: तो हम लोग प्रैक्टिस या मेंटालिटी कहे, हम लोग जनरली बच्चों को ही हम लोग प्रिफर करता है, जब भी हाउस हेल्प की बात करे, बच्चा देखने की बात करे, कुछ भी हो, हम लोग क्या है होटल वगैरह में काम करने के लिए भी, ऐसा क्यों चाइल्ड लेबर को ही हम लोग क्यों ऑप्ट करता है, मेन रीजन क्या है इस चाइल्ड लेबर का?
2: चाइल्ड लेबर का मेन रीजन तो वही है कि पॉवर्टी, गरीबी ना, गरीबी है। तो उसके बाद आपने बोला कि ये जो छोटा बच्चा को ही हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो छोटा बच्चा को ही क्यों प्रिपेयर करते हैं, उसका मेन रीजन तो वही होगा कि गरीबी और बच्चा को आप लोग, मैंने जिस तरह से मैंने जो एनालाइज किया है, जो केसेस जो वगैरह देखा है, छोटा बच्चा को वो लोग इसलिए प्रिपेयर भी करता होगा कि जैसे कि बच्चा को आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि आप किस तरह से उसको काम कराना चाहे आप करा सकता है मेरे ख्याल से। तो अभी भरा को अभी आप रहेगा तो उसको उसको जैसे बच्चा को आप कंट्रोल कर रहे हैं उस तरह से आप कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो मेन रीजन हमको वही लगता है
1: बच्चा को
2: प्रिपेयर करने का, और अवेयरनेस कम का वजह से भी होता होगा
1: चाइल्ड राइट के बारे में
2: मालूम नहीं होगी कि उसका क्या राइट्स है बच्चा का, उसको मालूम नहीं होता, ये भी हो सकता है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वही बच्चा को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि काम किस तरह से आप करा सकते हैं, क्योंकि बच्चा है तो वो इतना आपको मैंने जो आप बोल रहे हो उसको मना नहीं करेगा,
1: ज्यादा
2: जैसे चाहता है वैसे करा सकते हैं।
1: पैसा भी हो सकता है,
2: और पैसा मेन तो पैसा, गरीबी पैसा
1: नहीं, जैसे कि हम लोग बच्चा को कम पेमेंट देते हैं, इस वजह से भी हो सकता है,
2: उस वजह से भी हो सकता है। हाँ, जैसे आप उसमें कम पैसा में आप काम करा सकते हैं, जो बड़ा कर रहे हो वो भी करा देगा काम, तो वो चाइल्ड लेबर हो वो भी है।
1: अच्छा, जब हम ऐसे बच्चों के चाइल्ड राइट्स पर बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि जो बेसिक राइट्स है बच्चों का, बच्चों का क्या क्या अधिकार होता है।
2: तो बच्चा का अधिकार राइट्स जो वो ये कि स्पेशली बच्चा को बिलो 14 इयर्स को एजुकेशन कंपलसरी है, वो लोग तो गवर्नमेंट का तरफ से भी हम लोग का फंडामेंटल राइट्स भी है, आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना, वो फंडामेंटल राइट्स है कि बच्चा को कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए एज 6 to 14 इयर्स, तो कंपलसरी उसमें फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट का तरफ से देना चाहिए। और उसके बाद उसका जो मेंटल हेल्थ होता है, स्पेशली मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जो, और उसके जो फ्यूचर है वो सब, वही मेन तो वही है कि वो लोग का एजुकेशन में सबसे आगे,
1: एजुकेशन
2: कंपलसरी है
1: 6 to 14 इयर्स तक,
2: गवर्नमेंट का फ्री एंड कंपलसरी। और उसके बाद और उसका जो फिजिकल मेंटल हेल्थ में, हाँ वो सब में, और उसका फ्यूचर के लिए भी सोचना चाहिए।
1: हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ पे ये टर्म्स भी बोनता बोनती भी बहुत फेमस है, तो इसमें हम लोग के यहाँ पे अरुणाचल में जितना केसेस आपको मिला है उस हिसाब से, या आप जिस फील्ड में काम करती है उस हिसाब से, लड़का बच्चा ज्यादा देखने को मिलता है या लड़की बच्चा चाइल्ड लेबर में?
2: चाइल्ड लेबर में देखा जाने से लड़का लड़की हमको लगता है सेम।

0: ही है ना रेत जो, मतलब सेम सेम लगता है लड़का भी लड़की भी चाइल्ड लेबर के लिए।
1: और हम लोग का अपना स्टेट से है या बाहर स्टेट से ज्यादा है?
0: यहाँ हम लोग अरुणाचल में देखा जाने से तो बाहर स्टेट से ज्यादा है, स्पेशली असम तरफ से। हम लोग अरुणाचल में क्या है कि डोमेस्टिक हेल्पर के लिए बहुत सारा घर में रखा जाता है वो लोग असम से। और कुछ कुछ हम लोग का अपना लोकल भी है अरुणाचल ही, अपना लोकल भी वहां से भी है कुछ कुछ, लेकिन कंपेरिजन तो इसमें कंपेयर करने से बाहर से असम से ज्यादा है हम लोग का इस तरफ में, वो भी स्पेशल डोमेस्टिक हेल्पर के लिए। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे तो ऐसे है कि इंडस्ट्री फैक्ट्रीज वगैरह तो नहीं है, बाहर स्टेट में देखा जाने से तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज होता है, तो उसमें वो लोग बच्चा को ये करता है, चाइल्ड लेबर कराता है। तो हम लोग का अरुणाचल में तो अभी वही है कि वो सब नहीं है, तो घर में ज्यादातर जो हम लोग जो काम में क्रॉस किया है केस CWC का जो से, तो उसमें देखा जाता है डोमेस्टिक हेल्पर में चाइल्ड लेबर हम लोग बहुत सारा पाया गया। और कुछ कुछ है जैसे कि दुकान में आपने होटल में रख दिया, रेस्टोरेंट में किया है ना, और गैरेज वगैरह में है, ऐसे कुछ काम में, लेकिन डोमेस्टिक हेल्पर में बहुत सारा केसेस पाया गया हम लोग चाइल्ड लेबर में।
1: तो चाइल्ड राइट जैसे कि आपने अभी बताया कि कंपल्सरी एजुकेशन है, ये तो मेन है 6 to 14 ईयर्स में। तो अगर जो लोग इसको मेंटेन नहीं कर रहे, जो लोग इस चाइल्ड राइट्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मतलब जिसको आप लोगों ने चाइल्ड लेबर में बुक किया है जिन लोगों को, तो क्या सजा हो सकती है उन लोगों को?
0: तो उसमें जो पनिशमेंट ये है कि जो एम्प्लॉयर है जो उसको काम पे रखा गया है,
1: जिन्होंने रखा
0: रखा गया है, तो उसमें लॉ में एक हम लोग का जो इंडिया में एक एक्ट बनाया गया था चाइल्ड एंड एडोलेसेंट ना लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 एंड उसको अमेंड किया गया था 2016 में। तो इस पर ये एक्ट में ये जो पनिशमेंट दिया गया वो है 6 months इम्प्रिजनमेंट और प्लस 20,000 or 50,000 फाइन। तो उसमें आप बोथ फाइन भी हो सकता है या तो फाइन और प्लस इम्प्रिजनमेंट बोथ भी हो सकता है। तो वो जो डिपेंड करता है कि केसेस के ऊपर की सीवियरनेस के ऊपर, लाइक सीरियसनेस के ऊपर, केस के ऊपर देख के तो पनिशमेंट ये करता है।
1: और इतने दिनों में बच्चों का जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ का जो नुकसान हुआ उसको कैसे भरपाई कैसे करेंगे?
0: तो जो नुकसान हुआ है उसके लिए कंपेंसेशन, कंपेंसेशन हम लोग एम्प्लॉयर वो कंपेंसेट करना है। तो यहाँ पे वो रिलेटेड में एक केस भी था सुप्रीम कोर्ट का, लैंडमार्क केसेस है एक एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में वहां पे एक ऐसे केस हुआ था कि जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में बच्चा लोग को वही काम कराया गया था, तो देखा है तो बच्चा को हेल्थ में भी बहुत इफेक्ट हो रहा था। तो उसी को लेके ये इशू को लेके उसने वो लोग ने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में वही है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि मैंने जो किया है वो गलत है, तो बिलो 14 इयर्स बच्चा को, माइनर बच्चा को लेबर, चाइल्ड लेबर नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसका हेल्थ, उसका फिजिकल हेल्थ, एजुकेशन में पूरा हैम्पर हो रहा है, नहीं कराना है। और जो भी अगर वहां पे जो लॉसेस हुआ है उसको एम्प्लॉयर जो वो जो कंपेंसेट करना है, तो डायरेक्शन गाइडलाइन दिया गया था इस केस के थ्रू से।
1: कि इसमें राइट्स भी है सजा भी है।
0: राइट्स भी है सजा,
1: लेकिन इसमें ऐसे प्रैक्टिकली ये हो जाता है कि जो बच्चे को भेजते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो उन्हें पालने ही नहीं सकते। तो वो इसलिए भेजते हैं कि वो अपने पास रख के उसको एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? क्या पेरेंट्स को भी बुक कर सकते हैं या फिर क्या सोल्यूशन है उसका?
0: वो रिलेटेड में उसमें भी अलग अलग केसेस होते हैं। जैसे कोई पेरेंट्स होते हैं कि जैसे कि किसी का घर में अपने बच्चे को दे दिया, वही गरीबी का वजह से, अवेयरनेस नहीं होने का वजह से कोई कोई देता है। और उसको मेरा बच्चा को पढ़ा दो ना, उसके एजुकेशन को थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये करके देता है। और कोई कोई पेरेंट्स होता है कि खुद कुछ नहीं करते हैं ना, बच्चा को वो लोग ने ये कर पैदा तो कर दिया, कुछ नहीं करते हैं। और जैसे कि अल्कोहलिक एडिक्ट हो गया, खुद तो फिजिकली फिट है, काम नहीं कर रहे,
1: काम नहीं कर रहे,
0: और बच्चा को उसने डायरेक्ट बेच दिया, मतलब सेल कर दिया। तो ऐसे वो केसेस में हम लोग, हाँ, पेरेंट्स के अगेंस्ट में भी हम लोग बुक कर सकते हैं, पनिशमेंट दें उसका भी,
1: जैसे कि बच्चों को देखे मंथली

0: बच्चा का जो सैलरी होता है वो
1: हाँ,
0: पेरेंट्स लेता है उन लोगों के लिए भी,
1: उन लोगों के
0: या
1: लिए
0: जो
1: भी
0: कंप्लीट सेल कर देता है ऑनलाइन?
1: कंप्लीट सेल कर देता है उसके लिए भी, और जो कोई कोई पेरेंट्स होते हैं कि उसमें हम लोग केसेस मैंने देखना पड़ता है कि किस तरह से वो लोग कर रहे हैं, पेरेंट्स का कंडीशन और पेरेंट्स अवेयरनेस है कि नहीं है। तो पेरेंट्स अगर ठीक ठाक है, हाँ, अवेयर होते हुए भी बच्चा को वो दे देता है तो वो गलत है, क्योंकि वो जानते हुए भी दे रहा है और अपने छोटे बच्चे को दे रहा है, काम करा रहे, उसी से वो कमा के खा रहे, जबकि वो खुद वो कर सकते हैं, फिजिकली फिट है, वो अपना कमाई कर सकते हुए भी अगर बच्चा को वो देता है तो वो भी गलत है।
0: हाँ, तो तब उस केस में बुक किया जा सकता है
1: उस
0: पेरेंट्स?
1: केस में भी हाँ बुक किया जा सकता है।
0: अच्छा।
1: और कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि यहाँ पे जैसे कि वो लोग अवेयरनेस नहीं है और गरीबी, आपने
0: हाँ।
1: हाँ मैंने बताया कि पॉवर्टी, बेचारा वो भी खुद तो कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि किस तरह से मैंने कमाई करे ना,
0: हाँ।
1: तब अगर वो दे रहे तब भी अगर जैसे आप लोगों ने किसी को दे दिया कि चलो मेरा बच्चा को आप रख दीजिए और पढ़ाई भी करा दीजिए ना, तो उस केसेस में उसको थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं,
0: अच्छा।
1: तो हम लोग उसको अवेयर करा सकते हैं ना, ये कर सकते हैं।
0: और यहाँ में जैसे जहां तक हम देख सकते हैं कि जो लोग हम असम से जो लोग जिन बच्चों को हम रखते हैं, ज्यादातर उनका तो एजुकेशन तो होता नहीं है अपने
1: नहीं
0: यहाँ पे प्रैक्टिकली।
1: हाँ
0: अपने
1: प्रैक्टिकली
0: अरुणाचल के अंदर से जो बच्चे आते हैं उनको हम पढ़ाते हैं, लेकिन जो असम से आते हैं उन बच्चों को तो हम नहीं पढ़ाते हैं। और असम से जो आते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि माँ बाप भी उनको पाल नहीं पाते हैं, इसलिए हमें देते हैं यहाँ पे। तो क्या जो एम्प्लॉयर है उन लोगों की भी ड्यूटी होती है कि चलो माँ बाप तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास दिया है तो हमको भी इसको पढ़ाना ही है, इस टाइप का उनके लिए भी इस तरह की कोई कानून है कि आपने लिया है तो अंडर एज है तो आपको पढ़ाना ही है भले ही माँ बाप ने दिया हो, ऐसे कुछ है?
1: उसके वो भी अगर वो अवेयर अवेयर होते हुए भी ना, जानते हुए भी वो कि कानून है, बच्चे का कानून है, बच्चे के राइट्स हैं, खुद को पता है, जो एम्प्लॉयर अवेयर होते हुए वो रखते हैं तो वो भी गलत है। तो अगर वो रख रहे तो अच्छा से बच्चा को, जो बच्चा भी माइनर है कि नहीं खुद जानना पड़ेगा उसको, माइनर है तो पेरेंट्स को भी आगे आप बताना पड़ेगा ना ये चीज को कि आपका बच्चा माइनर है और यहाँ पे ऐसे ऐसे कानून है ना, तब भी आप चाहते हैं कि मेरा हमको रखो, तो ऐसे है तो वो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी बनता है कि हाँ अवेयर करना है और बच्चा को स्कूल भेजना है,
0: उसको
1: अगर
0: जो बेसिक
1: उसमें
0: राइट्स है
1: हाँ
0: वो
1: बेसिक
0: प्रोवाइड
1: राइट्स
0: करना
1: तो
0: है।
1: प्रोवाइड करना है। जैसे वो पेरेंट्स तो अभी देखिए आप गरीबी का वजह से कंपेल होके आपको दे रहे हैं, आपसे बोला जाने से तो मदद ही मांग रहे हैं ना,
0: यही।
1: तो उसमें जो एम्प्लॉयर का ड्यूटी होता है कि बेसिक राइट को चलो बच्चा को प्रोवाइड किया जाए ना, जिस तरह से अपना बच्चा को जो रखता है ना, उसी तरह से पेरेंट्स का कंसर्न में, तो पेरेंट्स भी आना जाना लगा रहे ना, सामने में बैठने से और अच्छा है साथ में बैठ के, हाँ नहीं कि पेरेंट्स दे दिया उसके बाद गायब हो गया पता नहीं, तो ऐसे होने से वो चाइल्ड लेबर में भी आ सकता है, ऐसे होता है। तो केस जो डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस होते हैं मतलब
0: जैसे पॉवर्टी में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें आप मेहनत करना चाहिए, वो किस तरह से अपना लाइवलीहुड मैनेज करना है वो तो आपके ऊपर रहता है। लेकिन ये जो अवेयरनेस है चाइल्ड राइट्स का के ऊपर, ये तो हम लोगों तक पहुंचा ही सकते हैं। तो किस तरह से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं इस चाइल्ड राइट्स के विषय पर, या फिर आपके CWC की तरफ से क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर किस तरह से आप लोग लोगों में इस तरह की जानकारी जो फैलाते हैं?
1: चाइल्ड राइट्स चाइल्ड अवेयरनेस का तो वही है कि जैसे कि स्कूल स्कूल में जाके अवेयर कराना, अवेयरनेस कराना, और जैसे विलेजेस में जाके, विलेज में जाके अवेयरनेस कि चाइल्ड राइट्स का बारे में हम लोग को बताना होता है, और क्या क्या राइट्स है बच्चा का, क्या होता है चाइल्ड लेबर वगैरह अवेयरनेस, तो उस तरह से हम लोग अवेयरनेस देते हैं, स्कूल वगैरह में जाता है, और वो या भी कुछ कुछ मैंने गांबुड़ा गांबुड़ी लोगों के बीच में विलेज में कि उसी से मैंने अवेयरनेस और ज्यादा फैले कि गांबुड़ा गांबुड़ी का तरह से ना, तो ऐसे करके अवेयरनेस हम लोग करते हैं और बताते हैं।
0: गांव के लेवल पे जाके वो
1: हाँ
0: CWC ही करते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी
1: उसमें
0: करते हैं।
1: CWC और वहां के जो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, NGOs होते हैं, उसके साथ हम लोग कोलाबरेट करते हैं, और उसके बाद हो गया हम लोग का ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो गया, उसके थ्रू से ना, तो ऐसे करते हैं।

0: वही है कि चाइल्ड लेबर को हम लोग अगर प्रिवेंट कैसे किया जाए बोलने से तो किस किस तरह से रुकाया जा सकता है और किस तरह से हम लोग अवेयरनेस और बढ़ा सकते हैं. तो मेन तो चाइल्ड लेबर को हम अवेयरनेस थोड़ा कम में लग रहे हैं और गरीबी ना अवेयरनेस भी होना पड़ेगा. और हम लोग स्पेशली हम लोग का अरुणाचल में हम लोग देखा जाने से इतना अवेयर नहीं है. तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए बोलने से थ्रू मीडिया. मीडिया इसमें बहुत मेन रोल कर सकते हैं कि आप जब आपको मालूम होगा कि मीडिया का थ्रू से आप अवेयरनेस करा सकते हैं चाइल्ड राइट्स के बारे में ना. उसके बाद हो गया आपका एनजीओस हो गया एनजीओस हो गया और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लोग हो गया. और गवर्नमेंट तो हाँ मेन रोल एक्टिव वो लोग करना पड़ेगा गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट का साथ साथ हम लोग साथ में मिलके हम लोग कर सकते हैं. और बिजनेसमैन हो गया यूथ हो गया उसके बाद एवरी सिटीजन ना हम लोग अरुणाचल का जो एवरी इंडिविजुअल हम लोग साथ देना पड़ेगा. अगर कोई आपको दिखाई दे रहा है कि चाइल्ड अब्यूज हो रहा है चाइल्ड लेबर हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं ना तो उसको आप इग्नोर नहीं करना है. आप उसको रिपोर्ट करना है कंसर्न अथॉरिटी को जैसे कि चाइल्ड लाइन हो गया CWC हो गया या तो पुलिस आप में अभी तो पहले मैंने बताया उसमें कंप्लेन करना चाहिए ना. और यूथ लोग अवेयरनेस दे सकता है ना. और जैसे कि बिजनेसमैन हो गया वो लोग भी कुछ कुछ फाउंडिंग्स मैंने ये जो गरीबी बच्चा होता है प्रॉपर्टी लाइन जो बच्चा होता है उसके लिए कुछ कुछ फंड वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकता है ना. कि इस तरह से हम लोग मतलब साथ में मिलके वर्कआउट कर सकते हैं.
1: अच्छा हाँ प्रिवेंट उसी तरह से कर सकते हैं कि बच्चे को आगे मान लीजिए रेस्क्यू भी कर लिया उसके बाद उसके फ्यूचर के लिए क्या करना है उसमें सोसाइटी का जितना भी लोग है सब मिलके उसके फ्यूचर के लिए हम लोगों को काम करना है
0: और एम्प्लॉयर भी ये जानना पड़ेगा कि जब आपको डोमेस्टिक हेल्पर के लिए हम लोग का क्योंकि अरुणाचल में तो डोमेस्टिक हेल्पर ही ज्यादातर रहते हैं तो आप खुद भी थोड़ा सा मालूम होना अवेयरनेस होना है कि और नहीं रखना है बिलो 14 इयर्स को नहीं रखेगा ये खुद जानना पड़ेगा उसका पेरेंट्स को बताना है. आप भी थोड़ा ट्राई करने अवॉइड करना है तो ये सब चीज हम लोग अवेयर होना पड़ेगा और एम्प्लॉयर जो रखता है वो लोग भी जानना पड़ेगा कि ऐसे नहीं कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वो लोग हाँ जो हम रख देगा चलो स्कूल उसको उसको बेसिक जो नीड्स है स्कूल एजुकेशन आप दे देगा उसी में भी कभी कभी नहीं हो पाते हैं कुछ कुछ चीज उसमें भी चूक जाता है कि जैसे हम जैसे आपका बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स आप उसको जो प्यार देता है उसका केयरिंग जो नीड एंड केयर होता है प्रोटेक्शन होता है वो चीज आप नहीं दे पाएगा. तो बच्चा के लिए बचपन में वो क्या है ये बहुत जरूरी है. तो एम्प्लॉयर लोग भी थोड़ा अवेयर होना है और हम यही सजेस्ट करेगा कि बिलो 14 इयर्स को आप रखना ही नहीं
1: रखना ही नहीं है.
0: अगर अगर आप मदद करना चाहता है कोई आपसे मदद मांगता है तो पेरेंट्स लोग तो उसको आप फाइनेंशियली आप मदद थोड़ा कर दो लेकिन खुद घर में डोमेस्टिक हेल्पर के लिए बोल के नहीं रखना है. हम तो ये सजेस्ट करते हैं
1: अगर आप डोमेस्टिक हेल्पर या किसी काम के लिए उसको रखा है तो वो हेल्प ही नहीं है कोई अगर आप उसका बेसिक जो राइट्स है उसको आप प्रोवाइड नहीं कर सकता है तो बेहतर है कि आप रखो ही
0: और बेसिक राइट्स आपने दे दिया चलो राइट्स दे दिया लेकिन देखा जाने से जैसे आप बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स होते हैं वो एक बॉन्डिंग जो एक लव एंड केयर होते हैं वो बॉन्डिंग इमोशनल बॉन्डिंग इमोशनल अटैचमेंट ये चीज नहीं होते. तो एज ए CWC मेंबर जो कम क्रॉस हमने जो केस देखा है हम लोग यहाँ पे ऐसे ही क्यों ना चलिए स्पेशली आसाम से लाके वो लोग नहीं रखता है अपना मतलब अपना ही टाइटल दे देगा अपना ही टाइटल का डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना देगा स्कूल में रखेगा ना. लेकिन बेसिक नीड्स बेसिक राइट तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन वो इमोशनल अटैचमेंट जो लव एंड केयर एक जो होता है जो बॉन्डिंग जो एक वो चीज बहुत मिसिंग है. तो ऐसे होने से उसमें हमको क्या लगता है कि चाइल्ड बेचारा वो बच्चा जो सफर कर रहे हैं
1: इमोशनली वो सफर हो रहे हैं.
0: तो हमको लगता है वो हम लोग भी थोड़ा अवेयर होना है जो एम्प्लॉयर जो रखता है बिलो 14 ईयर जो माइनर बच्चा है तो नहीं रखना चाहिए. और आप अगर हाँ पेरेंट्स का साथ उसको आपने रखा पेरेंट्स को आपने जॉब दिया पेरेंट्स को आपने फाइनेंशियली जो हेल्प कर रहे हैं वो कर सकते हैं. एबो 14 ईयर जब हो जाएगा 18 ईयर्स तो आप तब तो वो लोग थोड़ा समझ जाते हैं एडल्ट हो जाते हैं तब आप हाँ अगर वो बोलता है कि हमको कुछ काम दे दो तो आप या ऑब्वियसली देख के दे मदद कर सकते हैं.
1: अच्छा, चूंकि आप खुद एक एडवोकेट भी है और आपने अभी जिक्र किया कि हम लोग कुछ कुछ बच्चों को डोमेस्टिक हेल्प के लिए लाते हैं, स्कूल में भेज देते हैं, अपना नाम दे देते हैं, ये कितना सही है, इस पर आप क्या कहेंगे कि हम लोग खुद अपना नाम देते हैं फिर उनको अपने साथ रखते हैं, फ्यूचर में उनका क्या हो सकता है?
0: ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि लीगली एडॉप्ट तो नहीं हो रहा है आप ना, एडॉप्ट तो नहीं किया उसको
1: जी।
0: अगर आप उसका आपको आप उसका जो आपका जो टाइटल अगर बच्चा को देना चाहते हैं तो लीगली आप एडॉप्ट करना पड़ेगा। एडॉप्शन एडॉप्शन का प्रोसीजर अलग होता है।
1: हाँ।
0: तो उसमें आप जाना पड़ेगा। तो हम लोग का यहाँ पे हम लोग अरुणाचल में क्या है कि वो सब नहीं होता है, लेकिन हाँ हम बच्चा छोटा से हम मैंने उसको रखा है तो इसलिए हम उसका टाइटल दे रहे हैं, हमने एडॉप्ट कर दिया, लेकिन बोलने से नहीं होता है ना, मतलब कानूनन एक लीगली एक पेपर होना पड़ेगा। तो ये गलत है। और कल को क्या होगा कि बड़ा होके भी हमको लगता है बच्चा को तो हम पर होगा इससे।
1: किस तरह से?
0: जैसे कि लुक्स में भी बहुत मैटर करता है।
1: हाँ।
0: ना स्पेशली लुक्स में।
1: हुँ.
0: तो आप जैसे कि अभी आसाम का हो गया तो वो लोग का लुक्स नॉन ट्राइबल अलग हो गया, हम लोग का लुक्स बहुत अलग है। तो उसमें क्या होगा कि बच्चा बड़ा होते होते उसको चेरना भी तो शुरू हो जाता है।
1: हाँ।
0: ना कि तुम्हारा लुक्स अलग है।
1: हाँ।
0: तो वो चीज जो अंदर मेंटल हेल्थ में असर होगा, इमोशनली अंदर से डिप्रेशन होगा।
1: हाँ, हाँ,
0: तो वो चीज को एक्सप्रेशन भी नहीं कर पाएगा।
1: हाँ,
0: और हम लोग जो जो जो गार्जियन है वो भी नहीं जान पाएगा, ये भी हो सकता है।
1: हाँ, हाँ,
0: कुछ कुछ केसेस में नहीं।
1: वही चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में रिपोर्ट करने के लिए कैसे पहुंचे हम?
0: रिपोर्ट करना होने से आप हम लोग CWC में नहीं होने से भी आप जैसे कि चाइल्ड हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री एक नंबर भी है 1098 करके, तो ये इसमें आप कॉल करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर वहां पे आप रिपोर्ट करने से आप चाहते हैं कि आपका आइडेंटिटी मतलब डिस्क्लोज ना करो तो वो लोग नहीं करते हैं उसको, आपको प्राइवेसी रख देते हैं। उसके बाद लोकल पुलिस स्टेशन में दिया जाएगा, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट में और वही CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसके बाद स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में उसमें भी आप कर सकते हैं, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स उसमें भी आप रिपोर्ट दे सकते हैं।
1: तो रेस्क्यू करने का काम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नहीं करता है जनरली,
0: जनरली नहीं करते, वो चाइल्ड हेल्पलाइन ही करता।
1: तो चलिए हमारा वक्त भी हो चला है, तो आज आपसे इस चाइल्ड लेबर या चाइल्ड राइट्स के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिली मैडम। तो आज इस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के मौके पर आप आकाशवाणी के जरिए हमारे श्रोताओं को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे?
0: आज के जो 12 जून जो हम लोग जो मना रहे हैं जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि बिलो 14 इयर्स को बच्चा को जो एम्प्लॉयर है हम लोग भी खुद देखना चाहिए कि बच्चा माइनर है ना मेजर है, उसका एज कितना है, वो मेन हम लोग भी देखना चाहिए, देखते हुए मतलब उसको देखना है कारण। और पेरेंट्स अगर मेन रीजन तो गरीबी का वजह से होता है पॉवर्टी, और पेरेंट्स अगर आपको बोल रहे इंसिस्ट कर रहा होने से भी एम्प्लॉयर लोग जो रखता है वो लोग थोड़ा सा वो लोग को भी समझाना है, खुद भी अवेयर होना है, तो जानते हुए जो रखेगा तो कानूनन गलत होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करना है कि इसको मैंने वही मैंने बोला है कि हम लोग जो मीडिया हो गया, यूथ हो गया, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट तो कर ही रहा है, तो गवर्नमेंट का साथ साथ जो एवरी हम लोग जो इंडिविजुअल है साथ में उसको काम करना है, अवेयरनेस लाना है। और अगर कहीं पे कुछ बच्चा को एब्यूज हो रहा है, बच्चा को चाइल्ड लेबर अगर रख रहा है तो उसको हम लोग देख रहे दिखाई दे रहे, तो आप उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको आप कंप्लेन करना है कंसर्न अथॉरिटी को। मैंने आगे बताया चाइल्ड हेल्पलाइन हो गया, उसका टोल फ्री नंबर 1098 इसमें आप कंप्लेन करना है, या तो CWC ना सब डिस्ट्रिक्ट में CWC है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, तो वहां पे आप कंप्लेन करना है, या तो लोकल आप पुलिस में पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन में आप जाके कंप्लेन करेगा और चाइल्ड हेल्पलाइन में करेगा तो उसका थ्रू से हम लोग का पास CWC में आ जाता है। तो CWC हम लोग मेन बच्चा का जो नीड एंड प्रोटेक्शन जो केयर जिस किस तरह से हम लोग उसको प्रोटेक्ट करना है कैसे करना है वो प्रोसीड्यूर हम लोग देखा जाए, और मेडिकल अगर उसको कुछ चाहिए तो वो सब हम लोग कर लेते हैं। कंप्लेन करने से बच्चा का नाम क्या है, एज कितना है, और एम्प्लॉयर कौन है उसको तो बताना है अगर आप जानता है तो, ऐसे करके करना है। उसके बाद हम लोग खुद भी अवेयर होना है तो बिलो 14 ईयर्स को बच्चा को माइनर को हम लोग खुद भी नहीं रखना है. अगर उसको कुछ पेरेंट्स को अगर जरूरी है, अगर

हिंदी फिल्मी गीतों का कारवा भूले बिसरे गीत आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म हमराज से, जिनके बोल लिखे हैं साहिर ने और संगीत दिया है रवि ने। श्रोता दोस्तों, बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम में अगला गाना है वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ।

किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर के आवाज में आप सुन रहे थे वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, और ये है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर। कार्यक्रम का नाम है भूले बिसरे गीत। फिल्म आ गले लग जा के गीत के बाद बढ़ चलते हैं अब अगले गीत की ओर। अगला गीत है फिल्म फरार से, संगीत है कल्याण जी आनंद जी की, गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, और इस गीत को भी आवाज दिया है किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर ने।

मुद्दतों बैठे रहे हम तेरे एहसास के साथ, मुद्दतों बैठे रहे हम तेरे एहसास के साथ, दूर के दूर रहे और पास के पास। सुन रहे थे आप मैं प्यासा तुम सावन, और अब चलिए पर चलते हैं आज के इस अंक के आखिरी नगमे की ओर। फिल्म रॉकी से पेश है क्या यही प्यार है।

क्या यही प्यार है। आप सुन रहे हैं ये नगमा फिल्म रॉकी से, और इसी गीत के साथ ही सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कारवां भूले बिसरे गीत आज यहीं पर समाप्त होता है। और साथ ही श्रोता दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अब हमारी तीसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे थे तमाम एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा और मैं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना। जाने से पहले आपको बता दें कि अब से कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड की ओर। आप सुन पाएंगे एफएम गोल्ड से रिलेट कार्यक्रम। हम कल सुबह के 5:48 पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शिवरात्रि। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो रविवार को नीस में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीकी राजनयिक को बताई गई। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा कि अमरीका

0: के साथ दस्तावेज समझौते पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकानो यामागुची से होगा। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अकानो यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराया। वहीं पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी आज हार करके बाहर हो गई है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोसेनिया हर्जोगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे खेला जाएगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला आज 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारत इस विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में करेगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में भी तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the DRDO's Defence Research and Development Laboratory of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. According to the Ministry of Defence, Mr. Singh, while addressing the gathering, commended the Missile Systems and Strategic Systems Cluster of DRDO for its pivotal contributions to India's technological excellence, strategic autonomy and national security. He asserted that the exceptional performance of indigenous missile systems during Operation Sindoor is a testimony to the growing strength of India's defence research and development ecosystem. The Defence Minister said systems developed by DRDO, such as Akash and BrahMos, have demonstrated India's capability to compete in the global defence technology ecosystem. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of the NDA government at the centre. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving a fair price, West Bengal government is taking the lands from the common people and handing it over to BSF. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken Snake Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2,35,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su-Yu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final match. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin tonight with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. And that is the end of this news bulletin.
0: Namaskar. Akashwani se Vishw Darpan ke saath main Arun Kumar. मुख्य समाचार। भारत ने अमेरिकी दूतावास उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिका के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी प्रस्तावित समझौते पर ईरान के अंतिम निर्णय न लेने से पश्चिम एशिया में अनिश्चितता का कायम। ईरान ने कहा प्रमुख मुद्दे अभी भी अनसुलझे। उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और पद के दुरुपयोग पर दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की सजा सुनाई। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का आज रात एजबेस्टन में आगाज। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों के कारण हुई त्रासदी में 3 भारतीयों की जान बचाई जा सकती थी। अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अपर सचिव ने तलब किया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि असैन्य जहाज पर जानलेवा और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीकी राजनयिक को बताई गई। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है और मुश्किल की इस घड़ी में संवेदनशील क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वाणिज्य की सुरक्षा संरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालती है। श्री जेसन मीक्स से कहा गया कि भारत की ये गंभीर चिंता अमरीकी अधिकारियों तक पहुंचा दी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्र में तैनात अमरीकी सेना सभी आवश्यक उपाय करे ताकि आम नागरिकों की जान न जाए। मंत्रालय ने दूसरी बार किसी अमरीकी राजनयिक को तलब किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जल डमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना को अस्वीकार्य बताया। उधर ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए इसे क्रूर बताया। ईरान ने अमेरिका पर वैश्विक शांति और समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। ईरान ने विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जवाबदेही की मांग की। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं।
3: अमरीकी सेना ने जल डमरू मध्य के पास दो ईरानी ड्रोन को रोका है। लेबनान में सीमा पार झड़पें और सुरक्षा अभियान जारी है। इसराइल कई मोर्चों पर सैन्य दबाव बनाए हुए है।

0: समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बनी हुई हैं। लाल सागर और खाड़ी के जल क्षेत्र में व्यवधान ऊर्जा बाजारों के लिए नई चिंताएं पैदा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर आशा व्यक्त करते हुए दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक समझौते पर सहमति बनाने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की सराहना करता है। मंत्रालय ने कहा कि मिस्र क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के समन्वय और सहयोग से तनाव को कम करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप्स की संख्या लगभग 350 थी। अब भारत में 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
0: विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह ही नहीं बल्कि ये यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण कोरिया में सियोल अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने का दोषी पाया। एक रिपोर्ट।
4: सियोल केंद्रीय जिला न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति को दुश्मन को लाभ पहुंचाने और सत्ता के दुरुपयोग का दोषी ठहराया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यूंग को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि यून ने अक्टूबर 2024 में उत्तर कोरिया को उकसाने और मार्शल लॉ लागू करने का आधार तैयार करने के उद्देश्य से ड्रोन अभियानों को मंजूरी दी थी। पूर्व रक्षा खुफिया कमान प्रमुख यो इन ह्यूंग को 15 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। पूर्व ड्रोन संचालन कमान प्रमुख किम योंग डे को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 5 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है। विश्व दर्पण

0: समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। दसवां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच आज रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगी। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अमेरिकी दूतावास उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिका के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी प्रस्तावित समझौते पर ईरान के अंतिम निर्णय न लेने से पश्चिम एशिया में अनिश्चितता कायम। ईरान ने कहा, प्रमुख मुद्दे अभी भी अनसुलझे। उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और पद के दुरुपयोग पर दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की सजा सुनाई। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और 10वें आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आज रात एजबेस्टन में आगाज। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Juliet Arakel with the World News. The headlines. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. West Asia peace efforts remain fragile as Iran announces no final decision on proposed U.S. agreement, says key issues still unresolved. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk Yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. In badminton, P.V. Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup to begin tonight at Edgbaston. External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the U.S. Jason Meeks and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. We have a report.
3: The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The U.S. Chargé d'Affaires was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operate in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. Suparna Saikya for World News.
2: While United Nations Secretary General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization IMO Arsenio Dominguez has condemned the attack on Palau flag tanker off coast of Oman. Spokesman for the UN chief, Stephen Duharik, said Mr. Guterres is deeply concerned about the continuing escalation.
4: We also know that there's been some ships that have been hit, notably the Citadelo tanker that was hit and a number of Indian seafarers were killed. And that is an attack that was clearly condemned by the Secretary General of the International Maritime Organization. And we fully support and second that language.
2: Iran has also condemned the U.S. attacks on commercial vessels, describing them as brutal and accusing Washington of engaging in lawless conduct that threatens global peace and maritime security. On the other hand, U.S. President Donald Trump today accused Iran of carrying out drone attacks on Indian ships, leaving the Strait of Hormuz. Iran today announced that it has